के बिछा के स्वागत में खड़े हैं हम। आइए, आपके आने से रोशन है हर पल। खुशियों का कारवा साथ लाई हूँ, स्वाद के जायके की बहार लाई हूँ। आचार्य नाइटी एफएम के ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। स्वाद का जायका इस शो पर मैं आरजे भारतीय सीमा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। केम छो भाई लोग, सब मजा मा? भाई सबको ठीक होना ही चाहिए, क्योंकि आप सब आचार्य 90 एफएम के खास दोस्त हैं और दोस्तों का ख्याल रखना ये हमारा फर्ज है। वैसे आप सबने आचार्य 90 एफएम को सब्सक्राइब तो किया ही होगा, अगर नहीं तो अभी तुरंत हमारे दोस्ती वाले आचार्य 90 एफएम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी दोस्ती को कन्फर्म कीजिए। अब चलिए, अब हम बनाने जा रहे हैं कुछ इंस्टेंट रेसिपीज जिन्हें झटपट तरीके से बनाकर फटाफट खाया जाता है। वो जैसे नौ सीखिए कुक के लिए ये एकदम आसान टाइप की रेसिपी है। तो तैयार हो जाइए हमारी फर्स्ट रेसिपी, जो एक फेमस इंडियन स्टार्टर है और इसका नाम है मसाला पापड़। छोटी भूख या फिर एज अ स्टार्टर आप इसे सिर्फ 10 मिनट में बना सकते हैं। मसाला पापड़ बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: मूंग या उड़द दाल पापड़ 2, तेल 2 चम्मच, टमाटर के टुकड़े 4 चम्मच, प्याज के टुकड़े 4 चम्मच, बारीक कटा हुआ हरा धनिया मींस कोथमीर 2 चम्मच, नींबू 1, नमक 2 चुटकी, चाट मसाला 1 चम्मच और ढेर सारा प्यार भी चाहिए, क्योंकि आपके मन की भावनाएं उस खाने में उतरने वाली है। अब हम मसाला पापड़ बनाने की आसान सी रेसिपी को सुनते हैं। सबसे पहले आप तवे पर थोड़ा तेल फैलाकर पापड़ को सेक लीजिए। ऐसा करने से ये पापड़ ना ही एकदम ड्राई और ना ही एकदम ऑयली होंगे। हर पापड़ को एक सेपरेट प्लेट में रखिए। फिर एक कटोरी में टमाटर और प्याज के टुकड़ों को डालिए, उसमें नमक और चाट मसाला मिक्स कीजिए। अब इस मिश्रण को भुने हुए पापड़ पर अच्छे से फैलाइए, फिर उस पर नींबू निचोड़िए, फाइनली चॉप्ड कोरिएंडर मींस कोथमीर से गार्निश कीजिए। इस तरह से आपका मसाला पापड़ हो गया है तैयार और बच्चा पार्टी इस मसाला पापड़ को खाने के लिए हो रही है बेकरार। तो भाई देर किस बात की, मौका भी है और दस्तूर भी है, अब तो मसाला पापड़ बनाना ही है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 एफएम और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। इस मसाला पापड़ को आप दाल चावल, सब्जी रोटी या फिर एज अ इवनिंग स्नैक भी खा सकते हैं। पैकेट वाले चिप्स वगैरह खाने से अच्छा है कि हम होममेड मसाला पापड़ खाएं, क्योंकि होममेड खाने में टेस्ट और हेल्थ दोनों ही होता है। वैसे भी इन गर्मियों के दिनों में ज्यादा तला हुआ और मसालेदार खाना हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, तो इसका इलाज है मसाला पापड़। इस पापड़ की तारीफ में पेश है एक कविता। कविता का नाम है प्यारे प्यारे पापड़। सबको प्यारे लगते हैं खर्रम खुर्रम पापड़, उसका एक निवाला लेने वाला दोबारा मांगेगा आकर। इसे बनाने लगते हैं चटपटे मसाले और दाल, पापड़ से ही सजता है हर हिंदुस्तानी थाल। चाहे तलो या भूनो, क्रिस्पी इसकी आवाज, खाने का जायका बढ़ाता इसका अनोखा सा स्वाद। पापड़ हमारी परंपरा का है महत्वपूर्ण व्यंजन, हर रोज खाओ एक फिर भी बढ़ेगा नहीं वजन। हमारा पारंपरिक खाना नहीं है जंक फूड, स्वाद है इतना अच्छा कि सुधर देगा बिगड़ा मूड। दोबारा से अपनाए हम हमारी भारतीय संस्कृति, देसी खाना खाकर हम पाए अच्छी प्रकृति। हमारे पारंपरिक व्यंजन नहीं किसी से कम, सारे विश्व में भारत का डंका, यही है हमारा प्रण। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 एफएम और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा।

तारीफ तो हमने सुन ली, अब हम चावल की एक सिंपल सी रेसिपी सुनते हैं। मकर संक्रांति के एक दिन पहले भोगी का त्योहार होता है। भोगी के दिन मेरे पड़ोस की एक आंटी जो कर्नाटक के बेलगांव से हैं, वो इसे बनाती थी। आचार्य 90 FM के हमारे प्यारे ऑडियंस के लिए हम इसे समर सीजन स्पेशल कूलिंग रेसिपी के तौर पर पेश कर रहे हैं। इस रेसिपी का नाम है दही कांदा चावल। इसे बनाना आसान तो है ही, लेकिन इसे एंजॉय करना एकदम इंटरेस्टिंग है। दही कांदा चावल बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: जीरा डालकर पकाए हुए चावल 2 कटोरी। यहाँ पर आप कोई भी चावल ले सकते हैं, जैसे बासमती, कोलम या उकड़ा चावल। बस उन्हें अच्छे से पकाकर रूम टेम्परेचर पर लाइए। फिर हमें चाहिए ताजा दही 1 कटोरी, कोथमीर बारीक काटकर 2 चम्मच, नमक स्वादानुसार। यहाँ पर मैं 1/2 चम्मच नमक ले रही हूँ। स्प्रिंग ऑनियन मीन्स हरी प्याज बारीक काटकर 1 कटोरी। That's it. अब हम इसे बनाने की रेसिपी सुनते हैं। सबसे पहले एक बर्तन में पके हुए चावल, दही, हरी प्याज, नमक, इन सबको अपने हाथों से मिक्स कीजिए। हाथों से मिक्स करने से ये अच्छे से मिक्स होता है। फिर एक सुंदर सी प्लेट में इस चावल को परोसिए और बारीक कटी हुई कोथमीर से इसे गार्निश कीजिए। है ना झटपट तैयार होने वाली आसान सी रेसिपी। दही चावल और प्याज को एक साथ खाने से पेट में ठंडक सी छा जाती है और ये पचने में भी आसान है। इसे खाने से एसिडिटी कंट्रोल होती है और पेट भरने की फीलिंग भी मिलती है। हर रोज सुबह दही चावल का नाश्ता आप खाकर ट्राई तो कीजिए, फिर दिन भर एनर्जेटिक फील करेंगे आप। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी टिप देना चाहती हूँ, ताजा दही को यूज करना बेटर ऑप्शन है। खट्टा दही खाना हमारी सेहत के लिए फायदेमंद नहीं है। आयुर्वेद के अनुसार सुबह के समय दही खाना चाहिए, दोपहर के वक्त छाछ पीनी चाहिए और शाम को दूध पीना चाहिए। ये हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। अब खाना बनाकर मैं तो थक गई भाई साहब, आई नीड अ ब्रेक। तब तक आप एक गाना सुनिए।

के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आरजे भारती सीमा। वैसे मेरे पड़ोस की आंटी भोगी की थाली में दही चावल प्याज के साथ गाजर का कचुम्बर भी देती थी। गाजर के कचुम्बर का टेस्ट भी सुपर्ब है और खाने की थाली जितनी ज्यादा कलरफुल दिखती हो उतनी ज्यादा न्यूट्रिशियस होती है। तो पेश है हमारी अगली कलरफुल रेसिपी जिसका नाम है गाजराची कोशिंबीर मींस गाजर का कचुम्बर। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: कद्दूकस किए हुए गाजर मींस ग्रेटेड कैरेट्स 2 कटोरी, भुने हुए सिंगदाने का दरदरा पाउडर 4 चम्मच, शक्कर 1 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार। यहाँ पर मैं 1 चम्मच नमक ले रही हूँ। बारीक कटी हुई हरी मिर्ची 1, नींबू का रस 1 चम्मच, कोथमीर गार्निश के लिए। अब हम गाजर का कचुम्बर बनाने की रेसिपी सुनते हैं। एक बर्तन में कद्दूकस किए हुए गाजर, सिंगदाना पाउडर, नमक, शक्कर और थोड़ा नींबू का रस सब एक साथ मिलाकर अच्छे से मिक्स कीजिए। फिर एक कांच की कटोरी में इस इंस्टेंट कचुम्बर को सर्व कीजिए। डेकोरेशन के लिए उस पर थोड़ी कोथमीर डालिए। दैट्स इट। गाजराची कोशिंबीर मींस गाजर का कचुम्बर तैयार है खाने के लिए। आप चाहे तो थोड़े से घी में जीरा और कड़ी पत्ता का तड़का लगाकर इस पर डाल सकते हैं। इस तरह गाजर के टेस्टी कचुम्बर को बनाइए और बेझिझक इसका लुफ्त उठाइए। वैसे गाजर का हलवा तो हम सब खाते ही हैं, लेकिन गाजर का कचुम्बर भी कुछ कम नहीं है। अपनी भारतीय संस्कृति में ऐसे कई सारे व्यंजन हैं जो हम भूल से गए हैं और आचार्य 90 FM के स्वाद का जायका इस शो के माध्यम से हम हमारी भारतीय संस्कृति को फिर से जानने की कोशिश जरूर करेंगे। देखा जाए तो ऐसी क्विक रेसिपीज से पेट भरता ही है, साथ ही कुकिंग करने में ज्यादा इंटरेस्ट भी आता है। ज्यादा खाना बनाकर उसे फ्रिज में रखना, मतलब बासी बनाकर खाना, ये हमारी खाद्य संस्कृति बिल्कुल नहीं है। अगर ज्यादा खाना बने तो उसे अपनों के साथ शेयर कीजिए और मिल बांट कर खाइए। इससे आपसी दोस्ती और अपनापन बढ़ेगा। आज हम बात करेंगे भारत की सबसे फेमस लेडी शेफ तरला दलाल जी की। खाना पकाने के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ईयर 2007 में तरला जी को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वेजिटेरियन रेसिपीज से रिलेटेड 170 से ज्यादा कुक बुक तरला जी ने लिखी और वेजिटेरियन डेलिकेसीज को कई सारे घरों तक पहुंचाया। तरला जी ने शाकाहारी व्यंजनों को एक नया नजरिया देकर ट्रेडिशनल खान पान को मॉडर्न टच दिया है। ईयर 2023 में उन पर तरला इस नाम की एक बायोपिक फिल्म भी आई थी। हमें नाज है भारतीय शाकाहारी पाक कला की जूलिया चाइल्ड मींस शेफ तरला दलाल जी पर, जिन्होंने कुकिंग को एज अ मीडियम यूज करके सारी दुनिया में शाकाहार को फेमस किया। आज हम बात करेंगे गुजरात के एक फेमस पतले और क्रिस्पी ट्रेडिशनल नाश्ते के बारे में। ये नाश्ता मेनली गेहूं का आटा, तेल और मसालों से बनता है। ये लाइट वेट होने की वजह से एक हेल्दी स्नैक माना जाता है। इसे मेनली ट्रैवलिंग के दौरान खाना प्रेफर किया जाता है। वैसे हमारे गुजराती और राजस्थानी व्यंजनों में ये काफी फेमस है। लो कैलोरी और हाई फाइबर होने के कारण इसे वेट कंट्रोल करने वाला खाना इस रूप में पहचाना जाता। मैं बात कर रही हूँ ऑल टाइम फेवरेट खाकरा इस व्यंजन के बारे में। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा। हमारे नन्हे ऑडियंस फिलहाल समर वेकेशन मोड पर है, राइट? तो क्यों ना हम इनके लिए ही खाकरा से बनने वाली कोई चटपटी और इंटरेस्टिंग रेसिपी बनाएं। इटालियन पिज्जा तो सबको मालूम ही है कि नहीं? तो आज हम खाकरा यूज करके इंडियन स्टाइल खाकरा पिज्जा बनाते हैं। खाकरा को एज अ बेस यूज करके उस पर पिज्जा सॉस, सब्जियां और चीज लगाकर हम पिज्जा को भारतीय रूप में ढालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए बच्चा पार्टी स्पेशल खाकरा पिज्जा बनाने के लिए। खाकरा पिज्जा बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: प्लेन या मसाला खाकरा 4, टोमेटो सॉस 4 बड़े चम्मच, ग्रेटेड चीज आइदर मोजरेला और प्रोसेस्ड, प्याज, शिमला मिर्च, बॉइल स्वीट कॉर्न्स सब मिलाकर 1 कप। यहाँ पर प्याज और शिमला मिर्च को बारीक काट कर यूज कीजिए।
फिर हमें चाहिए चाट मसाला, ओरिगानो सीड्स, चिली फ्लेक्स, सब स्वादानुसार। यहाँ पर मैं अप्रोक्सीमेटली 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच ओरिगानो सीड्स और 1 चम्मच चिली फ्लेक्स ले रही हूँ। फिर हमें चाहिए मक्खन या घी 1 चम्मच। अब हम खाकरा पिज्जा बनाने की रेसिपी सुनते हैं। सबसे पहले हमें पिज्जा बेस को तैयार करना है, इसलिए खाकरे के ऊपर टोमेटो सॉस की एक पतली लेयर लगाइए। अब स्वीट कॉर्न के दाने, कटी हुई प्याज और शिमला मिर्च को उस खाकरे पर इक्वली फैलाइए। अब इस पर बहुत सारा ग्रेटेड चीज डालिए। आखिर में चाट मसाला, ओरेगानो सीड्स और चिली फ्लेक्स को इस पिज्जा पर छिड़के। फिर एक नॉन स्टिक पैन पर थोड़ा सा मक्खन या घी लगाइए। अब तैयार पिज्जा को ध्यान से उठाकर एकदम आराम से उस पैन में रख दीजिए। फिर उस पर ढक्कन लगाकर एकदम लो फ्लेम पे उसे पकाइए। लगभग 2-3 मिनट के बाद पिज्जा के ऊपर का चीज मेल्ट होने लगेगा। फिर उसे एक सर्विंग प्लेट में संभाल कर निकालिए। इस तरह से होममेड और इंडियन स्टाइल खाकरा पिज्जा हो गया है तैयार, और इसे टेस्ट करने बच्चा पार्टी है एकदम बेकरार। तो भाई, शुभ काम में देरी क्यों, झटपट खाकरा पिज्जा बनाइए और फटाफट से इसका लुत्फ उठाइए। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। वैसे अगर आप चाहें तो इस पिज्जा पर बारीक कटा हुआ पनीर भी ऐड कर सकते हैं, जिससे ये और न्यूट्रिशियस बनेगा। अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए कुकिंग करना हम सबको सीखना ही चाहिए। बच्चों को सॉलिड और लिक्विड पदार्थों में क्या फर्क है ये एक्सप्लेन करने के लिए किचन एक अच्छा मीडियम है। अपार्ट फ्रॉम दिस, छोटे बच्चों में फाइन मोटर स्किल्स डेवलप करने के लिए चम्मच चलाना, छीलना, मिक्स करना, ऐसी एक्टिविटीज एकदम यूजफुल है। किचन से रिलेटेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने से छोटे बच्चे दूसरों के काम की सराहना करना सीखते हैं, क्योंकि खाना बनाने में लगने वाली मेहनत को बच्चे खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एक और जरूरी बात, कुकिंग रिलेटेड एक्टिविटीज सीखने के लिए अन्न का सम्मान करना भी सीखेंगे। भाई, लेक्चर मेथड से बेहतर तो प्रैक्टिकल नॉलेज ही होता है कि नहीं? इनफैक्ट कुकिंग रिलेटेड एक्टिविटीज से हमारे नन्हे ऑडियंस बिल्कुल बोर नहीं होंगे, बल्कि खाना बनाना और औरों के साथ उसे शेयर करना, इस काम के लिए वो एक्साइटेड ही रहेंगे। आज मैं आपको महाभारत के 5 पांडवों में से एक पांडव की कहानी सुनाती हूँ। अज्ञातवास के समय महाबली भीम वल्लभ इस नाम को धारण कर विराट नाम के एक राजा के किचन में एज अ कुक काम करने लगे। एक बार क्या हुआ कि महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ राजा विराट के महल में पधारे। तब किचन में ज्यादा कुछ सब्जियां नहीं बची थी। तब गदाधारी भीम यानी वल्लभ ने जितनी भी थोड़ी बहुत सब्जियां थी उन सबको मिलाकर एक नया व्यंजन बनाया, जिसका नाम था अवियल। और इस अवियल को खाकर दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्य काफी खुश हुए। साउथ इंडिया मेनली केरल राज्य में अवियल इस व्यंजन को इम्पोर्टेंट माना जाता है। गदाधारी भीम, जिनमें 1000 हाथियों की शक्ति थी, वो खुद एक कुकिंग एक्सपर्ट थे। और खास बात ये है कि खाना बनाना और खूब खाना, इन दोनों कलाओं में भीम एक्सपर्ट थे। है ना इंटरेस्टिंग स्टोरी? खाने और खिलाने की इंटरेस्टिंग बातें तो चलती ही रहेंगी। अब समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं भी मत जाइए। वी विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।

वेलकम बैक टू स्वाद का जायका। आप सुन रहे हैं अच्छा NITFM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। ब्रेक पर जाने से पहले हमने गदाधारी भीम की स्टोरी सुनी। इस स्टोरी से हमें पता चलता है कि खाना खाने वाले को खाना बनाना आए तो उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली स्किल डेवलप होती है। किचन में काम करना एक रूटीन वर्क होता है जो हमें डिसिप्लिन मतलब अनुशासन सिखाता है। कुकिंग करते समय मसालों और टेस्ट को बैलेंस करना पड़ता है। वैसे ही हमारी लाइफ में भी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में एक बैलेंस रखना पड़ता है। ताजी सब्जियां हमें मेहनत से मिले रिजल्ट को दिखाती है, उसे देखकर हम भी प्रगति करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। जनाब इसीलिए तो किचन में एंट्री मारिए और कुकिंग की अनोखी दुनिया को एक्सप्लोर कीजिए। जो भी चीजें अवेलेबल है उन्हें इस्तेमाल करके जिसने खाना बनाना सीख लिया, समझो उसने जिंदगी की कठिनाइयों को फेस करके जिंदगी जीना सीख लिया है कि नहीं। आप सुन रहे हैं आचार्य NITFM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। भाई घर का किचन मींस घर का दिल होता है। यहाँ पर बर्तनों की खनक और मसालों की महक हमें प्यार और पोषण से भरती है। इस रसोई घर की खिदमत में पेश है एक कविता। कविता का नाम है मेरा रसोई घर एक जादुई कोना। घर के अंदर एक और घर, नाम है उसका रसोई घर। पूरे घर में जादुई नगरी बसती है सिर्फ यहीं पर। कढ़ाई है बीमार तो कुकर आगे आया, बजाकर सीटियां सारा टेंशन भगाया। पेट की आग बुझाता काला सा एक तवा, राई जीरे के छौंक से खुशबू बिखेरती हवा। किचन से ही पाती शक्ति, नाम है जिसका देह। घी की खुशबू से पाते हैं हम सब स्नेह। प्याज टमाटर अदरक लहसुन इन चीजों का जब लगे तड़का, तब हींग की मनमोहक खुशबू से चंचल मन मेरा बहका। घर का ये कोना जीवन की हकीकत बतलाता, मेरा रसोई घर मुझे जिंदगी जीना सिखलाता। आप सुन रहे हैं आचार्य NITFM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। आपको हमारा आज का एपिसोड कैसे लगा ये हमें जरूर बताइए। अगर आपके पास भी कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपीज हो तो हमसे जरूर शेयर कीजिए। भाई टेस्टी खाना और आचार्य NITFM पर बजने वाला गाना ये तो सुपर हिट कॉम्बिनेशन है। आपके साथ कुछ लम्हे कई यादें बतौर इनाम मिले। स्वाद का जायका इस सफर पर हमें तजुर्बे तमाम मिले। मिलकर बिछड़ना और बिछड़कर फिर मिलना यही है जिंदगी का दस्तूर। अब समय हो गया है।

आपसे विदा लेने का, इसमें मेरा क्या कसूर? आज के लिए बस इतना ही। हम वापस मिलेंगे हर सोमवार दोपहर 1 बजे और हर शुक्रवार शाम 4 बजे। आरजे भारतीय सीमा की तरफ से आप सबको सी यू सून वाला मेरा बाय बाय।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे शब्दे स्वागत करता हूँ आपका कहानियों की गुल्लक में। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जो मोटिवेशन से भरपूर है, जो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे संघर्ष और संघर्ष के बाद मिली हुई जीत की कहानी है। एक ऐसी जीत की कहानी जो आपके दिल में एक ऐसा सवाल छोड़ देगी, क्या हमें सच में कोशिश कितनी करनी चाहिए, ये वाला। क्योंकि हम अक्सर कोशिश नहीं करते और हमेशा ये कहते हैं यार कर लेता तो हो जाता, लेकिन काश हम चीजें करते तो रिजल्ट कुछ और होता। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी जिसका नाम है गोल्ड मेडल। सुबह के 4 बजे थे, पूरा शहर अब भी गहरी नींद में था। गलियों में सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी, लेकिन एक पतली सी गली के छोटे से घर का दरवाजा धीरे से खुला। 17 साल का अर्जुन अपने पुराने घिसे हुए रनिंग शूज पहनकर बाहर निकला। उसके शूज के सोल 2 जगह से फट चुके थे, लेस भी अलग अलग रंग की थी। उसकी माँ पीछे से बोली, बेटा रुक। अर्जुन मुड़कर देखता है, माँ एक स्टील के ग्लास में गरम गरम दूध लेकर खड़ी थी। बस इतना ही है, घर में पी ले। अर्जुन मुस्कुरा दिया, माँ एक दिन ऐसा आएगा ना जब मैं तुझे दुनिया का सबसे महंगा दूध पिलाऊंगा। माँ हंस पड़ी, मुझे महंगा दूध नहीं चाहिए, बस तेरा नाम टीवी पर देख लूं इतना ही काफी है। ये लाइन अर्जुन के दिल में बस गई और वो दौड़ने लगा। हर सुबह 10 किलोमीटर, ना जिम, ना कोच, ना प्रोटीन, सिर्फ एक सपना, और उस सपने का नाम था गोल्ड मेडल। अर्जुन महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में रहता था। पापा एक ऑटो ड्राइवर थे, दिन भर मेहनत करते थे, कभी 500 रुपए तो कभी 300 रुपए कमाते थे, और कभी कभी पूरे दिन में 150 रुपए भी मिलते थे। घर में 3 लोग थे, पापा, माँ और अर्जुन। टीवी पुराना था, फ्रिज नहीं था और कूलर भी नहीं था, लेकिन घर की दीवारों पर एक फोटो जरूर लगी थी, मिल्खा सिंह की। हर रोज अर्जुन उस फोटो के सामने खड़ा होकर कहता, एक दिन मैं भी इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीतूंगा। पापा हमेशा हंसते, बेटा सपना देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन पेट भी भरना पड़ता है। अर्जुन सिर्फ इतना कहता अपने पापा से, पापा एक मौका दे दीजिए और फिर देखिए। स्कूल में स्पोर्ट्स डे था, 100 मीटर रेस का कॉम्पिटिशन भी था। सब स्टूडेंट्स नए नए शूज में आए थे, किसी ने नाइकी, किसी ने एडिडास, और अर्जुन अपने फटे पुराने हुए शूज में आया। सबने शूज को देखा और अर्जुन का मजाक बनाने लगे, सब उस पर हंस पड़े। अरे देख, गोल्ड मेडल विनर आ गया, कहीं रास्ते में शूज टूट गए तो ये तो फिनिश लाइन तक भी नहीं पहुंच पाएगा। अर्जुन चुप था, सब उसका मजाक उड़ा रहे थे। रेस शुरू हुई, ऑन योर मार्क सेट, और विसल बजी, सब की तीर की तरह भागने लगे। शुरू हुई 40 मीटर तक, सब तीर की तरह भागे। शुरू के 40 मीटर तक अर्जुन पीछे था, सब लोग हंस रहे थे, लेकिन आखिरी 50 मीटर में जैसे उसके पैरों में बिजली आ गई, एक एक करके सब पीछे छूट गए। और क्या, फर्स्ट पोजीशन अर्जुन, पूरा ग्राउंड तालियों से गूंज उठा। स्पोर्ट्स टीचर भी हैरान रह गए, ये लड़का कौन है। प्रिंसिपल ने मेडल पहनाया, लेकिन मेडल से ज्यादा अर्जुन को एक बात याद आ रही थी। स्पोर्ट्स टीचर ने उसे साइड में बुलाकर कहा, बेटा तेरे अंदर ना टैलेंट है, टैलेंट। पहली बार किसी को देख रहा हूं जो बिना ट्रेनिंग के इतना फास्ट भाग रहा है, कल से मेरे साथ प्रैक्टिस करेगा। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए, सर फीस कितनी देनी होगी। टीचर मुस्कुरा दिए, टैलेंट की कोई फीस नहीं होती बेटा, बस तू आ जाना। उस दिन से अर्जुन की असली जर्नी शुरू हुई। अगले ही सुबह 4 बजे वो प्रैक्टिस के लिए स्कूल पहुंच गया। शाम को पापा के साथ ऑटो साफ करना, रात को पढ़ाई करना, दिन के 18 घंटे मेहनत होती थी, और 1 साल बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल चैंपियनशिप, ये उसकी जिंदगी की पहली सबसे बड़ी रेस थी। पूरे डिस्ट्रिक्ट के बेस्ट रनर्स आए थे, सबके पास कोच थे, डाइट था, रनिंग किट थी, और अर्जुन सिर्फ एक ट्रैक सूट जो स्पोर्ट्स सर ने अपनी सैलरी से खरीदा था। रेस के पहले सर ने कांधे पर हाथ रखा अर्जुन के और कहा, याद रख
रेस पैर नहीं जीतते, रेस हौसला जीतता है। और क्या, जैसे ही विसल बजी रेस शुरू हुई, पूरे स्टेडियम में शोर मच गया। अर्जुन ने जबरदस्त स्टार्ट लिया, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर सबसे आगे, लेकिन अचानक उसका पुराना शू फट गया, बैलेंस बिगड़ गया और वो गिर गया। पूरा स्टेडियम एक पल के लिए खामोश हो गया, बाकी रनर्स उसके आगे निकल गए। स्पोर्ट्स सर चीखे, अर्जुन उठ! उसके घुटने से खून निकल रहा था, दर्द बहुत था, लेकिन उसने माँ की बात याद रखी थी, मुझे बस तेरा नाम टीवी पर देखना है। अर्जुन धीरे से खड़ा हुआ और दोबारा भागना शुरू किया। अब रेस जितना मुश्किल था, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया। फिनिश लाइन क्रॉस करते ही वो जमीन पर गिर गया। इस बार वो फर्स्ट नहीं आया, फोर्थ आया, मेडल भी नहीं मिला। रात को घर आकर वो पहली बार रोया, माँ शायद पापा सही कहते थे, ये सपना मेरे लिए नहीं है। माँ ने उसकी बात बड़ी शांति से सुनी और बाद में उसके पास बैठकर कहा, बेटा जो लोग पहली हार के बाद सपना छोड़ देते हैं उनके नाम को कोई याद नहीं रखता, लेकिन जो गिर कर खड़े हो जाए, भागे और अपने सपने को जीत ले, उनका नाम सारे लोग याद रखते हैं। उस रात अर्जुन ने आंसू पोंछे और एक कसम खाई, अब सिर्फ डिस्ट्रिक्ट नहीं, मैं इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीतूंगा। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले ही हफ्ते उसकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो उसे ट्रैक से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देगा। तो दोस्तों, ये जो तूफान आने वाला है अर्जुन की जिंदगी में, ये कौन सा तूफान है? क्या ये अर्जुन को चैंपियन बनने से रोक देगा, या अर्जुन के पैर ही अर्जुन से छीन लेगा, जिससे उसकी भागने की क्षमता ही खत्म हो जाए, भागने की शक्ति खत्म हो जाए, या फिर घर की कोई ऐसी मुसीबत आ जाएगी, या फिर घर पे कोई ऐसी मुसीबत आएगी जो अर्जुन के सपने को तार तार कर देगी, ये मैं भी नहीं जानता, ये आप भी नहीं जानते। ये जानने के लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा और मिलना पड़ेगा उस ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप सुनते रहिए आचार्य 90 FM कहानियों की बोला।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे शब्बीर सुना रहा था आपको गोल्ड मेडल की कहानी। अब गोल्ड मेडल में अर्जुन जो है एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंपटीशन में हिस्सा लेता है और उसमें फोर्थ आता है, और वो मन ही मन सोचता है क्या उसके पिताजी सही कहते थे कि सपने देखना सही है लेकिन पेट भरना भी जरूरी है। लेकिन अर्जुन की माँ उसे हौसला देती है और कहती है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम अपनी जिद को पूरा करोगे और जीतोगे एक दिन। तो सुनते हैं कहानी का अगला हिस्सा। डिस्ट्रिक्ट रेस में हारने के बाद अर्जुन ने एक बात समझ ली थी, टैलेंट जरूरी है लेकिन टैलेंट से ज्यादा जरूरी है हिम्मत। अगले ही दिन वो सुबह 4 बजे फिर से ग्राउंड पहुंच गया। स्पोर्ट्स सर उसे देखकर मुस्कुरा दिए। मैं जानता था तू जरूर आएगा अर्जुन। अर्जुन ने सिर्फ इतना कहा, सर इस बार सिर्फ रेस नहीं जीतनी, जिंदगी जीतनी है। सर ने उसके कांधे पर हाथ रखा और कहा, तो फिर आज से ही असली ट्रेनिंग शुरू करते हैं। अब रूटीन और भी मुश्किल हो गया। सुबह 4 से 7 प्रैक्टिस होती, फिर स्कूल होता, शाम को पापा के साथ ऑटो चलाने में मदद होती और रात को पढ़ाई, और फिर स्ट्रेचिंग, मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन। स्पोर्ट्स सर उसे हर दिन एक ही बात बोलते, बॉडी थकने से पहले दिमाग हार मानता है अर्जुन। और अर्जुन धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट का सबसे तेज रनर बनने लगा। उसने अपने सर की कही हुई सारी बातों को तवज्जो दी, उनको मानना शुरू किया और सर की बताई हुई ट्रेनिंग से ही वो सारी चीजें करने लगा। एक दिन स्पोर्ट फेडरेशन के सेलेक्टर्स डिस्ट्रिक्ट में आए थे, स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए ट्रायल्स होने वाले थे। ग्राउंड में 200 से ज्यादा एथलीट्स थे, सबके पास ब्रांडेड किट्स थी, न्यूट्रिशंस थे, प्रोफेशनल कोचेस थे। अर्जुन के पास सिर्फ एक पानी और माँ के हाथ के बने 2 पराठे। एक लड़के ने हंसकर कहा, भाई पिकनिक पे आया है क्या? दूसरा बोला, गोल्ड मेडल व्हाट्सएप पे मिलता है क्या? अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ हेडफोन लगाए, आंखें बंद की और माँ की आवाज याद की, बस तेरा नाम टीवी पे देखना है, बस तेरा नाम टीवी पर देखना है। ट्रायल रेस शुरू हुई, विसल बजी, सब रॉकेट की तरह निकले। शुरू के 100 मीटर में अर्जुन तीसरे नंबर पे था, 150 मीटर 200 मीटर उसने स्पीड बढ़ाई, 250 मीटर अब वो दूसरे नंबर पर जा गया, और आखिर के 100 मीटर में पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। कमेंटेटर जोर से चिल्लाए, लेन नंबर 4 अर्जुन अनबिलीवेबल कमबैक और फर्स्ट पोजीशन। पूरा ग्राउंड तालियों से गूंज उठा। स्पोर्ट्स

सर की आंखों में आंसू आ गए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम स्टेट चैंपियनशिप के लिए सेलेक्ट हो गए। अर्जुन ने सबसे पहले माँ को फोन किया। माँ, मेरा सिलेक्शन हो गया है। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक खामोशी रही, फिर माँ रो पड़ी, बेटा आज लग रहा है कि भगवान ने मेरी सुन ली। लेकिन खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। स्टेट चैंपियनशिप से सिर्फ 10 दिन पहले पापा का ऑटो एक ट्रक से टकरा गया। एक्सीडेंट हुआ, बहुत सीरियस एक्सीडेंट। पापा हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए थे, घर में एक भी रुपया नहीं था। माँ अपनी शादी के कंगन लेकर ज्वेलर के पास गई। ज्वेलर बोला बस इतने ही मिलेंगे। माँ चुपचाप मान गई। अर्जुन दूर से सब देखता रहा। एक दिल में तूफान चल रहा था, उसने सोचा मैं रेस छोड़ देता हूँ। स्पोर्ट्स सर को पता चला, वो सीधा हॉस्पिटल आए। पागल हो गया क्या तू, रेस छोड़ेगा? अर्जुन बोला सर घर ज्यादा जरूरी है। सर ने गुस्से में कहा घर के लिए ही तो भागना है, तू रेस नहीं भागेगा तो जिंदगी भर पछताएगा। पापा ने भी ऑक्सीजन मास्क के साथ धीरे से कहा बेटा मेरे लिए मत रुक, एक दिन जब लोग मुझे गोल्ड मेडल विनर का बाप बोलेंगे ना तो मुझे और प्राउड फील होगा, तब मेरी सारी तकलीफ खत्म हो जाएगी, तब मेरी सारी खुशी बस तुझ में नजर आएगी। अर्जुन टूट गया। उसने पापा का हाथ पकड़कर बोला आप देखना पापा, मैं जीत कर ही आऊंगा। स्टेट चैंपियनशिप का दिन आ गया। हजारों लोग स्टेडियम में बैठे थे, टीवी कैमरास, मीडिया, नेशनल सिलेक्टर्स। अर्जुन पहली बार इतनी बड़ी रेस में हिस्सा ले रहा था, उसके पैर कांप रहे थे। सर ने उसे एक छोटा सा तिरंगा दिया और कहा इसे पॉकेट में रख, जब डर लगे याद रख तू अकेला नहीं भाग रहा, पूरा भारत देश तेरे साथ भाग रहा है। रेस शुरू हुई। सब एथलीट्स बहुत स्ट्रांग थे। 200 मीटर तक अर्जुन पीछे था। कमेंटेटर बोला लगता है प्रेशर में आ गया, लेकिन आखिरी बेंड पर उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। 1, 2, 3 रनर्स को पीछे छोड़ दिए। फर्स्ट लाइन में और फोटो फिनिश में पूरे स्टेडियम की नजर थी, सांसें रुक गई। रिजल्ट आया, विनर अर्जुन, स्टेट चैंपियन, नेशनल्स गेम के लिए सेलेक्ट। मीडिया उसके पास दौड़ पड़ी। अर्जुन आप अपनी जीत किसे डेडिकेट करना चाहोगे? अर्जुन ने कैमरा की तरफ देखा और कहा ये मेडल मेरी माँ के बचे हुए कंगन का नतीजा है। मेरे पापा का खून पसीने की कमाई है और मेरे स्पोर्ट्स सर के भरोसे का मेडल है। पूरा स्टेडियम खड़े होकर तालियां बजाने लगा। लेकिन नेशनल गेम से सिर्फ 1 महीने पहले प्रैक्टिस के दौरान अर्जुन के पैर में चोट बुरी तरह लग गई। एक डॉक्टर ने सीधा कह दिया हो सकता है तुम दोबारा कभी रेस नहीं भाग पाओगे। और ये सुनते ही अर्जुन के पैर की जमीन खिसक गई। अब आगे क्या होगा? क्या अर्जुन दोबारा रेस भाग पाएगा या फिर अर्जुन को रेस छोड़नी पड़ेगी या फिर कोई और नया मोड़ आएगा कहानी में? मैं नहीं जानता, आप भी नहीं जानते, हम दोनों नहीं जानते कि आगे कहानी में क्या होगा। पर इतना जरूर जानता हूं कि जो हौसला रखते हैं, जिनके अंदर जिद होती है और जो हर एक चीज को पूरा करने के लिए दिलो जान से मेहनत करते हैं, उनका सपना कभी खाली नहीं जाता, उनका परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो देखेंगे अर्जुन का परिश्रम इस छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए सुनते रहिए आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त, मिलता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद।

0: चेहरा कुछ जाहिर कुछ नेहा।
1: हाजरी ने मैं मेरा साथ दी, अंतरों से घूम के जब मैं मुखड़े पे आऊं तो मेरे साथ गाइए।
2: पहले आपके नाम आपकी सेहत पर एक गम हो जाए।
1: जी मैं शराब नहीं छूता।
2: कौन काफिर छूने को कहता है, बगैर हाथ लगाए चढ़ा जाओ एक ही सांस में।
3: तो लाइए देव साहब, हम ही आपके होंठों पे लगा देते हैं।
4: पी भी लीजिए देव साहब, बड़ी देर से छलक रहा है, वरना दुख होगा इसे।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आज शब्बीस स्वागत करता हूं आपका कहानियों की गुल्लक में। जैसे कि हम जान रहे हैं, अर्जुन एक रेस हारा, फिर उसने अपनी कोशिश जारी रखी, उसे सर मिले, सर के साथ उसने प्रैक्टिस की, फिर एक कंपटीशन गया, उस कंपटीशन को उसने जीता, लेकिन वो वहीं तक नहीं रुका, उसकी जिद काफी बड़ी थी। उसके माँ का जो सपना था उसे वो पूरा करना था, और अर्जुन उस सपने को पूरा करने के लिए हर एक वो काम कर रहा था जो उसे करना चाहिए था। अर्जुन कभी पीछे नहीं हटा, अर्जुन ने बस यही कोशिश की कि वो किस तरीके से अपने माँ के सपने को जिंदा रखे और अपने माँ के सपने को पूरा करे। तो चलिए देखते हैं अब कहानी का आखिरी हिस्सा। डॉक्टर्स की बात अभी भी अर्जुन के कानों में गूंज रही थी। लिगामेंट टियर हो चुका था, अगर जल्दी रेस भागे तो करियर हमेशा के लिए खत्म हो सकता था। एक पल के लिए सब कुछ खत्म सा लगने लगा था। नेशनल गेम्स सिर्फ एक महीने दूर थे। जिस सपने के लिए उसने सालों तक पसीना बहाया, वही सपना उसके हाथों से अब दूर जा रहा था, फिसल रहा था। उस रात अर्जुन ने पहली बार भगवान से शिकायत की, मैं ही क्यों, आखिर मेरी क्या ही गलती है, मैं तो सिर्फ अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना चाहता था, तो मेरे साथ ही ये क्यों। उसकी मां चुपचाप उसके पास बैठी रही। कुछ देर बाद उसने सिर्फ एक बात कही, बेटा भगवान कभी किसी का सपना नहीं तोड़ते, वो सिर्फ देखते हैं। सपना देखने वाला कितना मजबूत है, और अगर तुम मजबूत हो तो जरूर तुम ये अपनी परेशानी अपनी कठिनाई को पार कर जाओगे। और उसके बाद अगले एक महीने रेस से ज्यादा मुश्किल था। पेन, फिजियोथेरेपी, आइस पैक्स, एक्सरसाइज, हर दिन दर्द, कभी घुटना जवाब दे देता, कभी कॉन्फिडेंस, और क्या, सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो रहा था। लेकिन स्पोर्ट्स सर हर रोज बस उसे एक ही बात बोलते, गोल्ड मेडल ट्रैक पर नहीं जीता जाता, गोल्ड मेडल पहले दिमाग में जीता जाता है और उसके बाद गोल्ड मेडल मिल जाता है। अर्जुन मेडिटेशन करता, विजुअलाइजेशन करता, हर रात आंखें बंद करके फिनिश लाइन इमेजिन करता, और हर बार उसके सामने तिरंगा लहराता और खुद को देखता। अब धीरे धीरे एक महीना गुजर चुका था, नेशनल गेम्स अब आने ही वाले थे, और आखिरकार नेशनल गेम्स वाला दिन आ गया। देश के हर स्टेट के चैंपियंस एक ही स्टेडियम में खड़े थे। कमेंटेटर की आवाज पूरे स्टेडियम में गूंज रही थी, आज का 400 मीटर का फाइनल रेस, यहाँ से निकलेगा भारत का अगला चैंपियन। स्टैंड में हजारों लोग, टीवी कैमरास, मीडिया, और वीआईपी गैलरी में अर्जुन के पापा, जो एक्सीडेंट के बाद पहली बार व्हीलचेयर पर स्टेडियम आए थे। उनके पास माँ बैठी थी। माँ ने धीरे से कहा, देखो हमारा बेटा, देखो। पापा की आंखों में आंसू आ गए, और क्या, रेस शुरू हुई। ऑन योर मार्क्स सेट एंड विसल बजी। सब एथलीट्स बिजली की तरह निकल पड़े। 100 मीटर, अर्जुन चौथे नंबर पर था। कमेंटेटर्स बोला, अर्जुन स्लो स्टार्ट ले रहा है। 200 मीटर अब तीसरे नंबर पर। स्पोर्ट्स सर चिल्लाए, पेशेंस, 300 मीटर अब तीसरे नंबर पर। लेकिन उसके इंजर्ड पैर में हल्का सा दर्द शुरू हुआ। एक सेकेंड के लिए उसका बैलेंस ही हिल गया। उसके दिमाग में डॉक्टर की बात गूंज रही थी, करियर खत्म हो जाएगा। लेकिन उसी पल उसने वीआईपी गैलरी की तरफ देखी, पापा व्हीलचेयर पर खड़े होने

और आखिरी के 20 मीटर में तो पूछिए ही मत, दोनों रनर्स खड़े हो गए, कांधे से कांधा मिलाकर भाग रहे थे। 10 मीटर, 5 मीटर और क्या, फिनिश लाइन और फोटो फिनिश, और पूरा स्टेडियम खामोश। सबकी नजरें स्कोर बोर्ड पर थी। कुछ सेकंड जो अर्जुन को घंटों जैसे लग रहे थे, फिर स्क्रीन पर रिजल्ट फ्लैश हुआ, गोल्ड मेडलिस्ट अर्जुन। स्टेडियम तालियों से गूंज उठा, नेशनल एंथम बजना शुरू हुआ। अर्जुन पोडियम पर खड़ा था, उसके कंधों पर तिरंगा था, गोल्ड मेडल उसके गले में था। जैसे ही तिरंगा सबसे ऊपर गया, अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने मेडल को चूमा और धीरे से कहा, ये मेडल सिर्फ मेरा नहीं है, ये मेरी माँ का सेक्रीफाइस है, पापा की मेहनत है और स्पोर्ट्स सर के भरोसे का नतीजा है, और हर उस इंसान का है जैसे जिसे कभी लोगों ने कहा था तुमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन उसने वो कर दिखाया। अब एक अनोखा फैसला आने ही वाला था कि अर्जुन ने अवार्ड सेरेमनी के बाद मीडिया से पूछा अवार्ड सेरेमनी के बाद मीडिया ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन अब आपका अगला सपना क्या है? सबको लगा वो ओलंपिक्स बोलेगा, लेकिन अर्जुन मुस्कुराकर बोला, मैं ओलंपिक्स जरूर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने गांव में एक फ्री स्पोर्ट्स एकेडमी बनाऊंगा, ताकि किसी और बच्चे को फटे हुए शूज की वजह से सपना ना छोड़ना पड़े। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। 5 साल बाद जहां कभी अर्जुन अकेला सुबह 4 बजे दौड़ता था, आज वहीं 300 से ज्यादा बच्चे हर सुबह 4:30 बजे दौड़ते हैं। गेट पर बड़ा सा बोर्ड लगा था और उस पर लिखा था अर्जुन गोल्ड मेडल स्पोर्ट्स एकेडमी, और उसके नीचे एक लाइन लिखी थी, जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मान लेने वालों की कभी जीत नहीं होती। एक छोटा सा लड़का अर्जुन, जिसके पास सिर्फ एक सपना था, लेकिन उसके पास वो मेहनत, वो जिद, वो लगन थी, और उसी जीत के चलते, उसी मेहनत के चलते उसने अपना वो सपना पूरा किया। उसने वो गोल्ड मेडल जीता, उसने अपना हौसला बुलंद किया, और उसके गोल्ड मेडल जीतने के बाद उस पूरे शहर में, उस पूरे मोहल्ले में इतने स्टूडेंट्स अब रेस में और अलग अलग तरह के खेलों में हिस्सा लेने लगे, जिसकी शायद ही कभी किसी ने कल्पना की हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए सुनते रहिए आचार्य 90 FM पर कहानियों की गुल्लक। मैं आपसे कहता हूँ टाटा, बाय बाय, टेक केयर।

आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा। क्या आप जानते हैं कि चॉकलेट का इन्वेंशन अप्रोक्सीमेटली 4000 साल पहले यूएस के मेक्सिको में हुआ था। उस वक्त कुछ लोगों ने कोको सीड्स को यूज करके एक ड्रिंक बनाया था और इंटरेस्टिंग बात ये है कि कोको बीन्स से बने उस ड्रिंक को देवताओं का भोजन माना जाता था। 16th सेंचुरी में कुछ स्पैनिश लोग कोको बीन्स को मेक्सिको से यूरोप में ले आए और यूरोपियन लोगों ने उसमें शक्कर मिलाकर उसे मीठा बनाया। ईयर 1876 में मिल्क ऐड करके फर्स्ट टाइम एक सॉलिड चॉकलेट बार बनाया गया जो आज भी फेमस है। मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं, तो सुनिए। इनिशियली आई मीन टू से शुरुआती दिनों में चॉकलेट सिर्फ अमीर लोग और सरकारी खाते वाले लोगों का ड्रिंक हुआ करता था। उस टाइम चॉकलेट को एज अ करेंसी भी यूज किया जाता था और अब हम करेंसी देकर चॉकलेट्स खरीदते हैं। वैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद चॉकलेट ज्यादा फेमस हुआ। एक्चुअली हुआ यूं कि कुछ बंदर खुश होकर कोको बीन्स खा रहे थे। कोको बीन्स खाकर वो बंदर एकदम एक्साइटेड हो रहे थे। इस घटना को वहाँ मौजूद लोगों ने देखा। उन्होंने पता लगाने की कोशिश की ये सब हो क्या रहा है। इस तरह से चॉकलेट का फाउंडेशन बना। वैसे इस चॉकलेट से फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होने वाले लोग कौन थे ये आप जानते हैं? चॉकलेट से इंट्रोड्यूस होने वाले लोगों में सबसे ऊपर नाम आता है क्रिस्टोफर कोलंबस के लोगों का। कोलंबस कोलंबस छुट्टी है आई, हाँ वही वाला कोलंबस। ये वही इंसान है जिसने अमेरिका की खोज की थी। वैसे हमें तो चॉकलेट की खोज में ही ज्यादा खुशी लग रही है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा। ईयर 1798 में ब्रिटिश लोग चॉकलेट को भारत के दक्षिण इलाके में मींस साउथ इंडिया में लेकर आए। इस तरह चॉकलेट में भारत देश में एंट्री मारी। चॉकलेट इस शब्द को सुनते ही हमारे मुंह में स्वाद का सैलाब उमड़ पड़ता है। वैसे 9 फरवरी को हम सब चॉकलेट डे सेलिब्रेट करते ही हैं। इस फेमस चॉकलेट के टाइप्स के बारे में आप जानते हैं? डार्क चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट, व्हाइट चॉकलेट। अब डार्क चॉकलेट की टेस्ट थोड़ी कड़वी टाइप होती है, मिल्क चॉकलेट दूध वाली होती है और व्हाइट चॉकलेट को बिना कोको सीड्स बनाते हैं। वैसे एक और भी है, रूबी चॉकलेट। इसे रूबी कोको बीन्स से बनाते हैं और ये एक नेचुरल पिंक कलर वाली चॉकलेट है। और एक टाइप की चॉकलेट भी है जिसे कवरचूर चॉकलेट कहते हैं। इसे पेस्ट्री और चॉकलेट मेकिंग में यूज करते हैं। और आखिर में बिटर स्वीट चॉकलेट, इसमें शक्कर कम और कोको ज्यादा होता है। वैसे अगर देखा जाए तो 70% से ज्यादा कोको अगर किसी चॉकलेट में है तो हेल्थ वाइज उस डार्क चॉकलेट को अच्छा माना जाता है। डार्क चॉकलेट खाने से हमारा मूड अच्छा बनता है और हमारे हार्ट और ब्रेन के लिए भी ये फायदेमंद होता है। चॉकलेट आइसक्रीम, केक, ब्राउनी, बिस्किट्स, मिल्क शेक, बर्फी, लड्डू या चॉकलेट फज, आपका फेवरेट चॉकलेट आइटम क्या है? आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक स्मॉल ब्रेक। ब्रेक के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। स्टे ट्यून्ड।

0: वेलकम बैक टू स्वाद का जायका। वैसे हमारे भारत देश में अनोखे फ्लेवर्स की चॉकलेट भी मिलती है, फॉर एग्जाम्पल इलायची चॉकलेट, केसर चॉकलेट, पान चॉकलेट, सॉफ्ट चॉकलेट। दिवाली, रक्षाबंधन और बाकी त्योहारों में ट्रेडिशनल मिठाई के डब्बे के बदले चॉकलेट्स को एज अ गिफ्ट देना, ये सब लेटेस्ट ट्रेंड है। देखा जाए तो चॉकलेट सिर्फ खाने की ही नहीं बल्कि एक्सपीरियंस करने की चीज है। वैसे लेटेस्ट ट्रेंड्स में हरी मिर्ची और काली मिर्ची के फ्लेवर वाले भी चॉकलेट्स फेमस हो रही है। इंडियन करी और जिंजर मींस अदरक के स्वाद वाली चॉकलेट्स भी इंट्रोड्यूस हुई है। कैरमलाइज्ड ऑनियन फ्लेवर वाली 77% डार्क चॉकलेट में कैरमलाइज्ड ऑनियन फ्लेवर वाली 77% डार्क चॉकलेट ने ईयर 2025 का इंटरनेशनल चॉकलेट अवार्ड जीतकर गोल्ड मेडल हासिल किया है। कैन यू इमेजिन, कांदा के टेस्ट वाली चॉकलेट। वैसे भारत की सबसे महंगी वाली चॉकलेट ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम मेंशन कराया है और उस एक्सपेंसिव चॉकलेट का नाम है ITC फेबल ट्रिनिटी ट्रफल्स एक्स्ट्राऑर्डिनेयर चॉकलेट। और इस खास चॉकलेट की कीमत है 4,30,000 पर किलो। I mean 15 ट्रफल्स के बॉक्स की प्राइस होगी अप्रोक्सीमेटली 15 लाख। और इन ट्रफल चॉकलेट्स को सिर्फ प्रायर ऑर्डर देकर ही बनाया जाता है। ये एक लिमिटेड एडिशन वाली चॉकलेट है। वैसे क्या आपने चॉकलेट पानी पूरी के बारे में सुना है? चॉकलेट पानी पूरी एक फ्यूजन डिजर्ट है। कुरकुरी पानी पूरी को चॉकलेट में डुबोकर उसके अंदर मीठी बूंदी, चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स, कस्टर्ड भरकर चॉकलेट सॉस के साथ सर्व किया जाता है। वैसे पानी पूरी के अंदर पहले वैनिला आइसक्रीम भरकर या चॉकलेट मूस भरकर आप आइसक्रीम पानी पूरी कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं। क्या आपने कभी चॉकलेट डोसा ट्राई किया है? जनरली अपने रेगुलर वाले डोसा बैटर को तवे पर फैलाकर उस पर न्यूटेला या चॉकलेट क्यूब्स का या चॉकलेट फज फैलाकर मक्खन के साथ पकाया जाता है। फिर सर्व करते समय तैयार डोसा पर चॉकलेट सिरप और ड्राई फ्रूट से गार्निश किया जाता है। वैसे एक बार मैंने फ्राइड आइसक्रीम ट्राई की थी। जी हाँ, ठीक सुना आपने, तली हुई आइसक्रीम। इस रेसिपी में एकदम कड़क आइसक्रीम बॉल्स को मैदे की रोटी या ब्रेड के साथ कोट करके गर्मा गर्म तेल में एकदम तेज आंच पर 10-15 सेकेंड्स के लिए तला जाता है। मीन्स अंदर डाला तेल में और झट से बाहर निकाला। वैसे हमारे भारत देश में टैलेंट भरा पड़ा है, जरूरत है तो उसे प्रदर्शित करने की। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा। अब बात हो रही है टैलेंट की, तो भाई हम सब में कोई ना कोई टैलेंट तो होता ही है। सिंगिंग, डांसिंग या फिर मेरा फेवरेट कुकिंग। वैसे हर बार मैं करके किचन में काम करना मुझसे नहीं होता, और वो भी अपना टैलेंट दिखाने का चांस मैं हमेशा नहीं देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल किचन में तवे पर गर्मा गर्म रोटियाँ जब बनती है तब उसमें से 2 रोटियाँ मैं जरूर लेती हूँ। I mean to say तवे से सीधे अपनी प्लेट में। ऐसा करने से मुझे ताजा और गर्म खाना खाने को मिलता है और साथ ही खाना बनाने वाले की तारीफ करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होता है। मीन्स एक तीर से 2 शिकार मैं कर ही लेती हूँ। और इस बात से चिढ़कर हमारी आदरणीय मम्मी जी मुझे डांटती है। फिर इस डांट से सबक सीखकर हम किचन में कुछ अनोखे टाइप के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। जैसे ही मैं किचन के बर्तनों से राशन वगैरह ढूंढने लगती हूँ, हमारी आदरणीय मम्मी जी जोरदार भाषण शुरू करती हैं। इतना सा कुछ बनाते समय किचन के डब्बे और बर्तनों में हाहाकार मच जाता है। कभी कभी तो धुआंधार परफॉर्मेंस से किचन भर जाता है, तो कभी छई छप छई छप्पा छई स्टाइल वाली रेसिपी बनती है। एक बार मैंने मंगलवार स्पेशल मोदक बनाए। वो मोदक तोड़ने के लिए मेरे घर वाले हथौड़ी मांग रहे थे। इन सारी बातों को मैं कविता के रूप में पेश करती हूँ। कविता का नाम है किचन क्वीन के कारनामे। जब किचन क्वीन बनने का मुझे होता है साक्षात्कार, तब सारे बर्तनों में मचता है जोरदार हाहाकार। दूर से ही देखकर मम्मी जी की आंखें, नन्हा सा दिल मेरा थरथर थरथर कांपे। भूल जाती हूँ सब कुछ जब घूरते हैं चश्मे से वो नैन। फिर ना दिमाग चले मेरा और ना दिल को मिले चैन। सोचा था मैंने कि खाना बनाकर मनाएंगे जश्न, लेकिन बिगड़ा खाना देखकर मेरी मम्मी जी पूछे प्रश्न। अपने अनोखे सवालों से रही मुझे पुकार, मेरी क्लास लेने मम्मी जी ने भरी हुंकार। अलग अलग डब्बों में भरा हुआ था राशन, मेरी प्रयोगशाला को देख मम्मी जी दे रही जोरदार भाषण। किचन प्लेटफॉर्म पर फैल गया पानी, तो मम्मी जी के गुस्से से याद आई नानी। किचन में दिखाती हूँ जब कोई कारनामा, तब मम्मी जी के गुस्से से मचे जोरदार हंगामा। भाई कर लो आप गुस्सा, लेकिन बात है ये सच्ची, रोशन करूंगी मम्मी जी का नाम, कसम खाती।
1: नमस्कार, हार्टबीट्स विद साक्षी या सेगमेंटमध्ये मी आजचे साक्षी तुमच्या सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत करते। मित्रांनो, हो मित्रांनोच म्हणेन, कारण जिथे मैत्र जुळतं ना तिथे भावनांना व्यक्त होण्याची मोकळीकता मिळते। मी तुमच्याशी अनेक भावनिक, आपल्या जवळच्या आणि आपल्या हृदयाच्या विविध कप्प्यांमध्ये असणाऱ्या नात्यांविषयी, मग त्यात प्रेम, कुटुंब, मैत्री अशा विविध विषयावरती गप्पा मारणार आहे। ज्याने आपल्या मनात काही भावनांनी जो घोळ घातला असेल, काही गोष्टी विचार आपले अस्पष्ट असतील, किंवा नात्यांच्या गुंतागुंतीत आपण असे काही अडकले असू की पुढचा मार्गच दिसत नसेल, मग अशा वेळी नक्की काय करावं? नात्यातले विविध रंग, छटा, बदलत्या काळानुसार बदलणारी नात्यांची व्याख्या, या सगळ्या गोष्टींवर अगदी मनापासून मी तुमच्याशी संवाद साधणार आहे। आज आपण परफेक्ट जोडीदार या विषयावरती बोलणार आहोत। चला तर मग या विषयाला सुरुवात करण्याआधी आपण एक छान गाणं ऐकूया।

शहर 90 FM के ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। स्वाद का जायका इस शो पर मैं आरजे भारतीय सीमा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछली बार हमने आपसे दोबारा मिलने का वादा किया था, भाई अपना वादा निभाने के लिए हमें तो आना ही पड़ा। कैसे हैं आप सब लोग? ऑल गुड ना? अर्ज किया है आज का ये पल आपके नाम, इस शो का हर लम्हा भी आप ही के नाम है। इस पल के इंतजार में न जाने कब से हम बेकरार थे। आपके आने से ऑडियंस जी इस बेचैनी को मिला कुछ करार है। सोमवार की दोपहर में आप, शुक्रवार की शाम में भी आप, हर खाने के स्वाद में आप और हर स्वाद के जायके में भी आप। खाना बनाने की सोचूं तो ख्यालों में आप, गाना गुनगुनाने लगूं तो हर सुर में आप, सुरों की महफिल में आप और महफिल की रौनक भी आप, महफिल की शमा भी आप और उस शमा के परवाने भी आप। स्वागत है आपका इस जायकेदार महफिल में, आपके आने से तसल्ली पाई इस साहिल ने, आपके आने से बदले हमारे अंदाज और इस खुशी से खुश हुए सारे अल्फाज। हमारी आज की फर्स्ट रेसिपी एक स्वीट डिश है। इसे बनाने के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट यूज होने वाला है वो एक फेमस सब्जी और आयुर्वेदिक औषधि भी है। इस सब्जी से पेठा भी बनता है। इसमें कैलोरी कम और पानी की मात्रा ज्यादा होती है। मेंटल स्ट्रेस को कम करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। हमारी इम्यूनिटी का स्ट्रॉन्ग बनाने की शक्ति इस सब्जी में है। इस अनोखी सब्जी को कुष्मांड के नाम से भी जाना जाता है। वैसे नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ सफेद पेठा मींस एश गॉड की। मराठी में इसे कोहड़ा के नाम से जाना जाता है। सफेद पेठा दिखने में गोलाकार और भारी वजन वाला होता है। इसका बाहरी हिस्सा कड़क और अंदरूनी हिस्सा जूसी होता है। पूरी तरह से पकने के बाद इस पर सफेद पाउडर टाइप परख दिखाई देती है। इस हेल्दी पेठा की सब्जी से आज हम बनाने वाले हैं पेठे का हलवा। इसे काशी हलवा नाम से भी जाना जाता है। कद्दूकस किया हुआ पेठा, देसी घी, चीनी और खोया का परफेक्ट कॉम्बिनेशन करके हम बनाने जा रहे हैं पेठे का हलवा। पेठे का हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: सफेद पेठा अप्रोक्सीमेटली 1 किलो, चीनी अप्रोक्सीमेटली 1 कप या स्वाद के अनुसार, देसी घी 5-6 चम्मच, हरी इलायची 4-5, केसर के धागे 7 या 8, मावा या खोया 1/2 कप, मिल्क मसाला 2 चम्मच, मिक्स ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू, बादाम, अखरोट और पिस्ता सब 2-2, मुनक्का 10-12 और हमें चाहिए ढेर सारा प्यार, क्योंकि आपके मन की भावनाएं इस रेसिपी में उतरने वाली हैं। सबसे पहले पेठा को अच्छे से धो लीजिए, फिर हमें उसका छिलका और बीज हटाना है। छिलका और बीज हटाने के बाद उसे कद्दूकस करना है। कद्दूकस करना है मींस उसके बारीक टुकड़े कर लीजिए या तो फिर उसे ग्रेट कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। हरी इलायची का छिलका हटाकर उसका फाइन पाउडर बनाना है। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देती हूँ, साबुत इलायची को 1 या 2 चम्मच शक्कर के साथ मिक्सर में घुमाने से इलायची का पाउडर एकदम आसानी से बनता है। है ना इंटरेस्टिंग जानकारी? फिर हम केसर के धागों को 1 चम्मच गरम दूध में भिगोकर साइड में रख देंगे अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट के लिए। ऐसा करने से केसर उस दूध में अच्छे से घुल जाएगा और इस केसरिया रंग के दूध से पेठा हलवा बनाने की खूबसूरती में गजब का निखार आ जाएगा। अब आगे सुनते हैं। सारे ड्राई फ्रूट्स को लगभग 15 मिनट के लिए गर्म पानी में सोक करने रख दीजिए। 15 मिनट के बाद हमें छुरी की मदद से
उन ड्राई फ्रूट्स के पतले टुकड़े करने हैं। माय गॉड, इतनी सारी तैयारी करके मैं तो थक गई भाई साहब। आई नीड अ ब्रेक।

आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब हम पेठा हलवा बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। सबसे पहले मोटे बेस वाली एक कढ़ाई लीजिए। उस कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालकर गैस को ऑन कीजिए। फिर उसमें डालिए कद्दूकस किया हुआ या बारीक टुकड़े किया हुआ पेठा। हमें इसे लो फ्लेम पर पकाना है। लगभग 10 मिनट तक इसे चलाते रहिए, अदरवाइज ये एक तरफ से ही पक जाएगा। 10-15 मिनट के बाद उस पेठे का कच्चापन दूर होगा। तब हम उसमें डालेंगे चीनी, केसर और ढेर सारा प्यार। फिर इस मिश्रण को मिक्स करते हुए अच्छे से पकाएं। चीनी पिघलने के बाद ये मिश्रण थोड़ा ढीला हो जाएगा। पेठा का मॉइस्चर और चीनी का गीलापन सूखना चाहिए और ये मिश्रण गाढ़ा बनना चाहिए। इस स्टेज तक पहुंचने के लिए हमें इसे लगातार चलाते हुए पकाना है। लगभग 8 से 10 मिनट के बाद ये मिश्रण सूख जाएगा। फिर हम इसमें ऐड करेंगे खोया यानी मावा और थोड़ी इलायची पाउडर। फिर सारे ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कीजिए। इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। लगभग 3-4 मिनट के बाद आप गैस को बंद कर दीजिए। अब हमें इसे डेकोरेट करना है। इसके लिए हम लेंगे एक सुंदर सा बर्तन और उस बर्तन में इस गर्मा गर्म पेठा के हलवा को ट्रांसफर करेंगे। आप चाहे तो रोज पेटल्स से इसे डेकोरेट कर सकते हैं या फिर काजू और बादाम के पतले टुकड़ों से फूलों वाला डिजाइन भी बना सकते हैं। फिर सबसे पहले भगवान को इस पेठा के हलवा का भोग लगा ही दीजिए। ऐसा करने से इसकी सात्विकता बढ़ेगी। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के उस पार आपसे और भी बातें होंगी।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 एफएम और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। इस पेठा हलवा की तारीफ में पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है ट्रेडिशनल पेठा का हलवा। सुनहरी सी एक रेसिपी जो है एकदम ट्रेडिशनल। पेठे का हलवा मींस यमी और न्यूट्रिशनल। ऑडियंस जी, किचन में कीजिए एंट्री और दिखाइए अपना जलवा। ऐसा करने के लिए आप जरूर बनाइए पेठे का हलवा। पेठे को कहते हैं आयुर्वेद में औषधि। इलायची पाउडर डालकर इसे बनाया सुगंधी। पेठा घी और शक्कर का सुनहरा ये मिलाप। और साथ में सुनिए नए पुराने कुछ म्यूजिकल आलाप। खाने और गाने का ये मेल, मतलब सेहत और मनोरंजन का सुंदर सा खेल। खाना और गाना, यही है हमारे इस शो की जान। पारंपरिक खाना खाकर बढ़ाइए अपने देश का मान। सोमवार और शुक्रवार को रहूंगी मैं हाजिर, क्योंकि स्वाद का जायका शो के हम सब है मुसाफिर। मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 एफएम योर ओन रेडियो। भाई, पेठे का हलवा हमने बना लिया है, अब बारी आती है हमारी अगली रेसिपी की। एक खट्टा मीठा फल है जिसका आकार लगभग बेर जितना या उससे थोड़ा सा छोटा होता है। इसका पौधा कांटेदार और झाड़ियों वाला होता है। जब ये फल कच्चा होता है तब हरे रंग का दिखता है। पूरी तरह से पकने के बाद ये काले रंग का दिखता है। विटामिन सी से भरा ये फल एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। हमारे किसान भाई इसे अक्सर अपने खेतों की मेंढों पर एज अ फेंस लगाते हैं। ऐसा करने से जंगली जानवर खेतों में नहीं घुसते। यहां पर मैं बात कर रही हूँ करौंदे की। मराठी में इसे करवंद के नाम से जाना जाता है। इस करवंद से अचार, चटनी, जैम और जेली बनाई जाती है। आज के शो में हमारे प्यारे ऑडियंस के लिए इस करौंदा मींस करवंद की चटनी को हम बनाने वाले हैं और इसका टेस्ट एकदम चटपटा है। इस चटनी को आप सिंपल दाल चावल या सीधे रोटी पर लगाकर एज अ कंफर्ट फूड एंजॉय कर सकते हैं। करौंदे की चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: हरा करौंदा या करवंद 1/2 किलो, हरी मिर्ची के टुकड़े 3-4, अगर आपको तीखा पसंद है तो आप इसकी मात्रा बढ़ा दीजिए, ब्राउन गुड़ या चीनी 1 कटोरी, हल्दी 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, बड़ी सौंफ पाउडर 1 चम्मच, जीरा 1/2 चम्मच, राई मींस सरसों 1/2 चम्मच, हींग 1 चुटकी, कटा हुआ हरा धनिया 2 चम्मच, मेथी दाना पाउडर 1/2 चम्मच, तेल 4 चम्मच अप्रोक्सीमेटली, नमक स्वाद के अनुसार। यहाँ पर मैं लगभग 1 चम्मच नमक ले रही हूँ। सबसे पहले आप एक साफ बर्तन में पानी लीजिए, उसे अप्रोक्सीमेटली 2 चम्मच नमक को मिक्स करके साइड में रखिए। जब नमक घुल जाए तब उस सॉल्टी वाटर में सारे करौंदे लगभग 15 मिनट तक भिगोकर रख दीजिए। वैसे ये मेथड आप बाकी फल और सब्जियों के लिए भी यूज कर सकते हैं। ऐसा करने से उन फल या सब्जियों में से कीड़े वगैरह निकल जाएंगे। अब हम आगे की रेसिपी को सुनते हैं। फिर उन करौंदा मींस करवंद को एक कपड़े से पोंछ लीजिए। उसके बाद हरे करौंदे के हम 4 टुकड़े करने वाले हैं और अंदर का बीज हटाने वाले हैं। उसके बाद आप लीजिए एक मोटे बेस वाली कढ़ाई। उस कढ़ाई में डालिए थोड़ा सा तेल। इस तेल को हम धीमी आंच पर गरम करेंगे। अगर आप नारियल का तेल यूज करें तो इसका फ्लेवर एनहांस होगा। फिर उसमें वघार या तड़का लगाना है। उसके लिए सबसे पहले उस तेल में डालिए सरसों। सरसों के बाद हम डालेंगे जीरा
ये सीक्वेंस आप फॉलो करते रहिए, पहले सरसों फिर जीरा। सरसों और जीरा को चटकने दीजिए। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक ब्रेक, ब्रेक के उस पार आपसे और बातें होंगी।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब तड़के में डालिए खुशबूदार हींग। हींग डालने के बाद नंबर आता है मेथी पाउडर और हरी मिर्ची का। हरी मिर्ची को अच्छे से फ्राई कीजिए। आप अपनी पसंद के मुताबिक हरी मिर्ची की मात्रा को बढ़ा सकते हैं या फिर घटा भी सकते हैं। अब बारी आती है हल्दी पाउडर और नमक की। फिर हम उस मिश्रण में ऐड करेंगे सौंफ पाउडर और धनिया पाउडर। उसके बाद हम डालेंगे करौंदे मींस करवंद के टुकड़े। इस मिश्रण को एक चम्मच की मदद से आप अच्छे से मिक्स कीजिए। अब बारी आती है थोड़ी सी मिठास की मींस अब हम शक्कर को ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ, अगर आप चाहें तो शक्कर के बदले ब्राउन गुड को यूज कर सकते हैं। ऐसा करने से ये चटनी ज्यादा पौष्टिक बनेगी। फिर इस मिश्रण पर एक ढक्कन रखिए। इसे लो फ्लेम पर हम लगभग 5 मिनट के लिए पकाएंगे। ऐसा करने से गुड़ या शक्कर अच्छे से मेल्ट होगा। 5 मिनट होने के बाद इसमें लगभग 1 या 1.5 कप पानी ऐड कीजिए। फिर उस पर ढक्कन लगाकर लगभग 15 मिनट के लिए उसे धीमी आंच पर पकाना है। 15 मिनट के बाद आप गैस को बंद कर दीजिए और पकी हुई चटनी को उसी तरह ढक्कन लगाकर छोड़ दीजिए। ऐसा करने से चटनी का टेक्सचर और गाढ़ा होगा। जब ये चटनी पूरी तरह से ठंडी हो जाए तब इसे कांच के बर्तन में ट्रांसफर कीजिए। उसका रीजन तो आपको पता ही है, खट्टी चीजों को धातु के बर्तन में रखने से उस धातु की मींस मेटल की क्वालिटी खराब हो जाती है, इसलिए बी केयरफुल। अब हम इसे थोड़ा डेकोरेट करते हैं। इस करौंदा मींस करवंद की चटनी को डेकोरेट करने आप इस पर छिड़किए बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और अगर आपको तीखा खाना कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है तो उस पर मींस उस चटनी के मिश्रण पर आप रखिए एक हरी मिर्ची। दैट्स इट। इस प्रकार हमारी खट्टी मीठी टेस्ट वाली करौंदा या करवंद की चटनी हो गई है तैयार और इसे टेस्ट करने घर के लोग कब से बैठे हैं एकदम बेकरार। तो जनाब, इस गर्मी के सीजन को थोड़ा आसान बनाने के लिए आप करौंदा की चटनी को जरूर बनाइए और इसे अपनों के साथ मिल बांट कर मजे से खाइए। आपको हमारी आज की रेसिपीज कैसी लगी ये हमें जरूर बताइए। ताजा खाना खाइए और आचार्य 90 FM के गीत गुनगुनाइए। वैसे ये करौंदा या करवंद की चटनी को आप एयर टाइट डब्बे में भरकर 3-4 दिनों तक फ्रिज में स्टोर कर ही सकते हैं। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। वैसे ये करौंदा चटनी इतनी टेस्टी होती है कि एकदम फटाफट बनती है और गटागट खाकर खत्म भी हो जाती है। इस करौंदा चटनी की तारीफ में पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है अपनी सी करौंदा की चटनी। खेतों की मेंढों पर पंछियों का घरौंदा, खट्टी मीठी चटनी बनाने आप लाए करौंदा। झाड़ियों में मिलने वाला अनोखा सा ये फल, इसके सेवन से मिलेगा स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी का हल। करौंदे से बनाई मजेदार चटनी, खट्टे मीठे टेस्ट से लगती बिल्कुल अपनी। खट्टे और मीठे स्वाद का ये संगम, मुश्किल से रखा मैंने अपने मन पर संयम। करौंदा का मतलब मराठी में करवंद, खाओ देसी खाना और सेहत बनाओ बुलंद। पारंपरिक खाने को क्यों करे नजरअंदाज, इसे खाकर करे नए ट्रेंड का आगाज। खट्टे मीठे फल में डाला मिर्ची मसाला, एक बार खाकर तो देखिए आधी टेंशन का शला। संस्कृति और स्वाद का स्वादिष्ट मेल मींस सेहत और मनोरंजन का सुपर हिट खेल। मिलती रहूंगी आपसे हर सोमवार और शुक्रवार, आपसे होने वाली हर मुलाकात करती मुझे बेकरार। आचार्य 90 FM है योर ओन रेडियो, बातें होंगी आपसे फ्रॉम अवर स्टूडियो।
स्टूडियो से रेडियो तक होने वाला सफर, मतलब सेहत और म्यूजिक का जुगलबंदी ऑफर। दिल से करती हूँ आपका धन्यवाद, अच्छा लगता है मुझे आपसे करना संवाद। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो और मैं हूँ आपकी दोस्त RJ भारतीय सीमा। अब हम सुनते हैं एक क्विक रिकैप। स्वाद का जायका इस शो के आज के एपिसोड में हमने बनाया पेठे का हलवा, शुरुआत में ही मीठा बना दिया। कुष्मांड के नाम से भी जाने जाने वाली इस सुपर कूल सब्जी में शक्कर, देसी घी और ड्राई फ्रूट्स डालकर हमने ये स्वीट डिश बनाई। इस काशी हलवा के नाम से भी फेमस रेसिपी को हमने एकदम शिद्दत से पकाया। इस प्रकार हमने एकदम मधुर अंदाज में अपने प्यारे ऑडियंस से दोस्ती निभाई। फिर बारी आई करौंदे की चटनी की। ये खट्टी मीठी चटनी है, मराठी में इसे करवंदाची चटनी के नाम से जाना जाता है। कच्चा करौंदा, चीनी और कुछ मसालों को इस्तेमाल करके हमने ये ट्रेडिशनल रेसिपी बनाई। सिंपल दाल चावल या फिर गरम रोटी के साथ इसे खाना मींस कंफर्ट फूड वाला मूड निभाने जैसा है। अगर आपके पास भी कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपीज है तो हमें जरूर बताइए। और अगर आपको अपनी पसंद का कोई नगमा सुनना है तो वो भी हमें बताइए। अच्छा खाना खाइए और आचार्य 90 FM के गीत गुनगुनाइए। लेकिन लेकिन लेकिन उसके पहले आचार्य 90 FM को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसा करने से हमारी दोस्ती एकदम पक्की हो जाएगी। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ही दीजिए, क्योंकि जल्दी ही रिमझिम बारिश का मौसम आएगा और लजीज खाने के साथ सुहाने गाने गुनगुनाने का आपका मन जरूर करेगा। इसलिए आचार्य 90 FM से जुड़े रहना बेहद जरूरी है। अर्ज किया है, एक खत लिखा था बादलों को, भीगा भीगा जवाब आया अभी। ठंडी छाव लेकर आए बादल, लेकिन आपकी याद ने ऑडियंस जी हमें भिगो दिया तभी। सोमवार और शुक्रवार का मनचाहा इंतजार, मतलब धूप में आए जैसे बारिश से बहार। आप ही हो ऑडियंस जी आचार्य 90 FM का परिवार, खुश नसीब है वो जिसे मिले आपका इकरार। टेस्टी व्यंजनों के साथ सुरीली सी तान मींस अपनापन जताने का मिल गया मान। अब कर ही दीजिए आचार्य 90 FM को सब्सक्राइब और दोस्ती की व्याख्या को जरूर कीजिए डिस्क्राइब। ज्यादा बातें करने का अब नहीं है टाइम, दोबारा मिलने आऊंगी और करूंगी रेसिपीज और सॉन्ग्स को कंबाइन। आपकी मौजूदगी से ये शो बना ब्राइट, दुनिया में रोशन हो हमारी संस्कृति की लाइट। अब समय हो गया है आप सबसे विदा लेने का, वापस मिलने का ये मेरा वादा, सिर्फ वादा नहीं एकदम पक्का वादा। RJ भारतीय सीमा की ओर से आप सबको सी यू सून वाला मेरा बाय बाय।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आज शब्बीर स्वागत करता हूँ आपका कहानी के उल्टे। आज की कहानी है बहुत ही ज्यादा थ्रिलर से भरी हुई। ये कहानी है किडनैपिंग की। एक किडनैपिंग जिसमें बहुत सारी चीजें हैं। वो चीजें अगर मैं आपको शॉर्टकट में बता दूं तो फिर आप कहानी नहीं सुनोगे ना, इसके लिए आपको पूरी कहानी सुननी है। और इस कहानी के इतने मजे लेने कि शायद जैसे एक मूवी चलती है ना 3 घंटे की, ठीक उसी तरह। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी जिसका शीर्षक है गुमशुदा। मुंबई की बारिश का अपना अलग ही मूड होता है। कभी लगता है कि शहर को साफ कर रही है और कभी लगता है कि शहर को डुबा रही है। 22 जुलाई रात के 9:47 हो चुके थे। अंधेरी ईस्ट एक 1 BHK फ्लैट में अयान खान अपनी कॉफी के साथ लैपटॉप पर क्राइम आर्टिकल कंप्लीट कर रहा था। वो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था, ऐसा रिपोर्टर जो पुलिस प्रेस रिलीज से ज्यादा गलियों के सच पर भरोसा करता था। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ, अननोन नंबर। हेलो। दूसरी तरफ से कुछ सेकंड्स तक सिर्फ सांसें सुनाई दी, फिर एक छोटी सी बच्ची की कांपती हुई आवाज, पापा मुझे घर जाना है प्लीज। अयान तुरंत सीधा बैठ गया। बेटा कौन हो तुम, तुम्हारे पापा का नाम क्या है? लेकिन जवाब देने से पहले ही कॉल कट हो गया। रूम में सिर्फ बारिश की आवाज बच गई। उसने तुरंत नंबर रिडायल किया। The number you're dialing, it switch off. एक मिनट बाद व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन आता है, एक फोटो, 8 साल की एक लड़की, हाथ कुर्सी से बंधे हुए, आंखों पर काला कपड़ा, पीछे नमी वाली पुरानी दीवार और नीचे सिर्फ एक लाइन, 24 hours पुलिस गई तो लाश मिलेगी। अयान की उंगलियां ठंडी पड़ गई। ये प्रैंक नहीं, एक ऐसी चीज थी जो शायद किसी का भी दिल दहला सकती थी। टीवी ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में चल रही थी। एंकर की आवाज आई, मुंबई के मशहूर बिजनेसमैन राजीव मल्होत्रा की 8 साल की बेटी अन्या मल्होत्रा स्कूल से लापता हो गई है। स्क्रीन पर जो फोटो दिखी थी ये वही बच्ची थी। अयान ने फोन और टीवी दोनों को एक साथ देखा। उसके पास वो फोटो कैसे आई? किडनैपर ने उसे ये क्यों कांटेक्ट किया? पुलिस को क्यों नहीं? उसने तुरंत अपनी एडिटर मीरा को कॉल किया। मीरा, मेरे पास आन्या का किडनैपिंग प्रूफ है। दूसरी तरफ 3 सेकंड्स की खामोशी। पुलिस को कॉल करूं? मैसेज में क्लियरली लिखा है पुलिस गई तो मीरा बच्ची नहीं बच पाएगी। मीरा ने बीच में रोका, अयान कभी कभी जर्नलिस्ट होने से पहले इंसान बनना पड़ता है। और उसने कॉल कट कर दिया। लेकिन अयान का इंस्टिंक्ट कुछ और कह रहा था। किडनैपर उसे कुछ और दिखाना चाहता था। अयान पूरी रात अपने बेड पर इधर से उधर करवटें बदल रहा था, फोटो देख रहा था और बस यही सोच रहा था कि आखिर किडनैपर ने उसे ही क्यों कांटेक्ट किया। अगली सुबह आन्या के स्कूल के बाहर मीडिया का समंदर था। पुलिस बैरिकेड्स थे, कैमरास थे, रोते हुए पेरेंट्स। अयान प्रेस कार्ड दिखाकर अंदर गया। गेट के सीसीटीवी रूम में उसका पुराना दोस्त मिला, इंस्पेक्टर कबीर। कबीर ने उसे देखते ही खाया, इस बार स्टोरी मत बनाना, एक बच्चे की जान का सवाल है। अयान ने फोन निकाला और अपने दोस्त कबीर को फोटो दिखाई। फोटो देखते ही कबीर का चेहरा सफेद पड़ गया।
ये फोटो तुम्हारे पास कैसे आई? अयान ने कबीर को सब सच बता दिया। कबीर ने बिना देर किए फोन फॉरेंसिक टीम को फोन लगाया और कहा, अब तुम कहीं और नहीं जाओगे। थोड़ी देर बाद सीसीटीवी फुटेज प्ले हुई। 3:12 पर आनिया स्कूल के गेट से बाहर निकली। नॉर्मली ड्राइवर उसे पिकअप करता था, लेकिन उस दिन एक व्हाइट स्कूल वैन उसके सामने रुकती है। ड्राइवर यूनिफॉर्म में था, वैन पर स्कूल का स्टिकर भी लगा था। आनिया बिना डरे अंदर बैठ गई। 3 सेकेंड वैन गायब। कबीर धीरे से बोला, स्टिकर फेक था। प्रोफेशनल किडनैपिंग हुई है प्लानिंग के साथ। अब सारी चीजें जो है आन्या के पिताजी के पास। राजीव मल्होत्रा का बंगलो किसी होटल से कम नहीं था, लेकिन उस दिन हर रूम में सिर्फ एक ही चीज थी, खौफ। आन्या की मां नैना पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो पूरी रात रो रही थी। राजीव उसे बार बार एक ही बात बोल रहा था कि तुम डरो मत, मैं किडनैपर को बोल दूंगा, पैसे चाहिए तो ले लो, लेकिन मेरी बेटी वापस मुझे दे दो। तभी घर के फोन पर एक रिंग बजती है और सब चुप हो जाते हैं। राजीव ने स्पीकर ऑन किया। एक डिसऑर्टेड आवाज, 20 करोड़ कैश 24 घंटे के अंदर। राजीव बोला, मैं दे दूंगा। किडनैपर हंसा, पैसे इंपॉर्टेंट नहीं, तुम्हारा दर्द इंपॉर्टेंट है। इतना कहकर कॉल कट हो गया। कबीर ने धीरे से कहा, सर ये जो किडनैपिंग हुई है ये सिर्फ पैसों के लिए नहीं हुई है, इसके पीछे कुछ पर्सनल मोटिव है। फोरेंसिक रिपोर्ट आई। फोटो के बैकग्राउंड में एक छोटा सा बोर्ड ब्लर था। इमेज इनहांस हुई, सिर्फ 2 लेटर्स दिखे, आर के। कबीर बोला, ये आर के वेयरहाउस है शायद। अयान तुरंत खड़ा हुआ। रे रोड में आर के कोल्ड स्टोरेज था, 5 साल पहले वो बंद हुआ था। कबीर उसकी तरफ देखने लगा और कहा, चलो जल्दी चलो। सब निकल पड़े रे रोड। समंदर के पास एक पुराना गोडाउन, दरवाजा आधा खुला हुआ, अंदर अंधेरा, पानी टपकने की आवाज। टॉर्च की रोशनी में जमीन पर छोटे छोटे पिंक कैरियन के टुकड़े पड़े थे। कबीर झुक गया। ये बच्ची यहीं पर थी। अयान को एक दीवार पर कुछ लिखा दिखा, क्रूक्ड हैंडराइटिंग, पापा सेव मी। उसके नीचे एक टेडी बियर, लेकिन बच्ची वहां नहीं थी, सिर्फ एक रिकॉर्डर था। कबीर ने उस रिकॉर्डर का प्ले बटन दबाया। आन्या की आवाज, पापा मुझे बहुत डर लग रहा है। और फिर अचानक से एक आदमी की आवाज आई, अयान अगर हीरो बनने की कोशिश की तो अगला रिकॉर्डर नहीं सीधे लाश मिलेगी। रिकॉर्डर बंद। कबीर ने धीरे से अयान की तरफ देखा। अब ये सिर्फ राजीव का केस नहीं रहा, किडनैपर तुम्हें भी जानता है। बाहर बिजली चमकी जोर से और कहानी का असली अंधेरा अब शुरू हुआ। तो दोस्तों, राजीव जो कि शहर का बड़ा बिजनेसमैन है, उसकी बेटी आन्या किडनैप हो चुकी है और किडनैपर ने राजीव को कनेक्ट नहीं करके पहले आन्या की फोटो भेजी अयान को और फिर 20 करोड़ की डिमांड की और ये भी कहा कि पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारा दर्द इंपॉर्टेंट है। तो इससे तो साफ पता चलता है ये किडनैपर कोई बाहर का नहीं, ये कुछ पर्सनल था। लेकिन क्या पर्सनल था ये आप और मैं जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए सुनते रहिए आचार्य 90 FM पर कहानियों की गुलाब।

0: time. Dilip the ghost. He was known to be a killer. And feared the most.
1: Hello and welcome to Acharya 90 FM. मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे शब्बे स्वागत करता हूँ आपका कहानियों की गुल्लक में. आन्या किडनैप हो चुकी है और कबीर और अयान उस लोकेशन पे पहुंचे थे जहां आन्या को किडनैप करके रखा था. लेकिन इनके पहुंचने से पहले ही किडनैपर आन्या को वहां से लेकर फरार हो गया और वहां पर एक रिकॉर्डर मिला जिसमें ये कहा था कबीर अयान हीरो बनने की कोशिश मत करो. तो इससे पता चलता है कि जो किडनैपर है वो राजीव और अयान दोनों को जानता है और उनकी हर चाल को भी समझता है. अब देखते हैं आगे क्या होता है. आर के वेयरहाउस के बाहर निकलते ही कबीर ने पूरा एरिया सील कर दिया. मीडिया को एक शब्द भी नहीं पता चलना चाहिए, उसने कमांड दिया. अयान रिकॉर्डर को बार बार सुन रहा था. हर बार उस डिसॉर्टेड आवाज में एक अजीब सी फैमिलियरिटी थी महसूस हो रही थी. रात के 1:18 हो चुके थे. उसके फोन पर फिर नोटिफिकेशन आया. इस बार वीडियो था. वीडियो ऑन हुआ. आन्या एक छोटे से कमरे में बैठी थी. उसके सामने एक बर्थडे केक रखा था लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे. कैमरे के पीछे से वही आदमी बोला, हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस. आन्या का दिल रुक सा गया. आज आन्या का बर्थडे था. फिर कैमरा सीधा आन्या की तरफ घुमा जैसे वो देख रहा हो. जर्नलिस्ट साहब, 2019 याद है?
2: वीडियो खत्म.
1: अयान के हाथ कांपने लगे. 2019, वो साल जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी. 3 पहले अयान ने एक एक्सपोज किया था. रुद्रा बायोटेक नाम की फार्मास्यूटिकल कंपनी बच्चों के मेडिसिन में फेक क्लिनिकल डेटा यूज कर रही थी. रिपोर्ट पब्लिश हुई, कंपनी बंद हुई, सीईओ अरेस्ट हुआ. लेकिन एक आदमी पुलिस इनकाउंटर में मारा गया. बताया गया उसका नाम था राघव खुराना, इन्वेस्टिगेशन का मास्टरमाइंड. कबीर ने धीरे से बोला, ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से राघव डेड है. अयान ने हमें सर हिला के मंजूरी दी और कहा, लेकिन नहीं, अगर ये वो नहीं तो फिर वो मर चुके हैं तो ये जिंदा कौन है? पुलिस स्टेशन में पैनिक मच गया. दूसरी कंप्लेंट फिर से आई और अब जो गुमशुदा था वो था 10 का विवान. सेम पैटर्न, फेक स्कूल व्हीकल, सेम टाइमिंग. कबीर ने टेबल पर मैप फैलाया. दोनों स्कूल एक ही रेडियस में थे. आयान ने मार्कर उठाया और दोनों लोकेशंस को ज्वाइन किया. बीच में एक अबॉन्डेड मेट्रो टनल आता है. ये वही रूट है, आयान बोला. कबीर ने तुरंत स्पेशल टीम भेजी लेकिन टनल खाली निकला. सिर्फ एक चीज मिली, एक चेस बोर्ड, और उस पर लिखा था, ब्लैक किंग गायब. पीछे मार्कर से लिखा था, गेम अभी शुरू हुआ है, आगे आगे देखो होता है क्या. सुबह 6 फॉरेंसिक लैब से कॉल आया. वेयरहाउस के फिंगरप्रिंट्स मैच हुए. सब शॉक हो गए. प्रिंट्स किसी क्रिमिनल के नहीं थे, राजीव मल्होत्रा के, पर्सनल सिक्योरिटी हेड महेश यादव के थे. महेश को तुरंत कस्टडी में ले लिया गया. इंटरोगेशन रूम में कबीर चिल्लाया, आन्या कहां है? महेश रोता रहा और कहता रहा, मैंने सिर्फ गेट खोला था. मुझे लगा फेक किडनैपिंग है. मुझे 50 दिए गए थे. किसने? महेश ने धीरे से बोला, राघव. रूम में सन्नाटा छा गया. महेश ने एक और नाम लिया. अंदर कोई और भी थे. कौन? महेश जवाब देने ही वाला था कि ढाम. बाहर से स्नाइपर की गोली खिड़की को तोड़ते हुए उसके सीने में लगी। महेश वही मर गया। किलर ने अपना सबसे बड़ा विटनेस खत्म कर दिया। अब पूरे पुलिस स्टेशन में सन्नाटा था, जो उनका इकलौता गवाह था उसे भी

गोली लग चुकी थी और वो मर चुका था। सारी फ्रस्ट्रेशन को लेकर जब अयान अपने घर लौट रहा था, उसकी घर की लिफ्ट खुली, अंदर एक गिफ्ट बॉक्स पड़ा था। उस पर लिखा था, ओपन एट होम। कबीर ने मना किया। कबीर ने कहा, कुछ भी हो सकता है इसमें। कबीर ने बॉम्ब स्क्वाड को बुलाया। बॉम्ब स्क्वाड ने बॉक्स खोला, अंदर बॉम्ब नहीं था, एक पुरानी फोटोग्राफ थी, 12 साल पुरानी फोटोग्राफ। फोटो में अयान, उसकी छोटी बहन सारा और उसके पेरेंट्स थे। सारा जो 14 साल की उम्र में मिस्टीरियस मिसिंग हुई, कभी मिस्टीरियसली मिसिंग हुई और कभी मिली ही नहीं। फोटो के पीछे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, उस दिन भी तुम उसे बचा नहीं पाए थे और अब भी तुम दोनों बच्चों को बचा नहीं पाओगे। अयान टूट गया। कबीर समझ गया, ये किडनैपिंग सिर्फ राजीव के खिलाफ बदला नहीं, ये अयान के खिलाफ पर्सनल वॉर भी है। और असली सवाल अब ये था, क्या सारा का डिसअपीयरेंस भी राघव से जुड़ा हुआ था या फिर इस कहानी का, इस किडनैपिंग का एक और ही अलग एंगल है। तो दोस्तों, जैसे कि हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम जान रहे हैं कि ये जो किडनैपर था, ये कोई पर्सनल पहचान वाला ही था, जिसे शायद कभी ना कभी अयान के वजह से कुछ ना कुछ तकलीफ हुई होगी या कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई होगी, और ये किडनैपर उसी पर्सनल चीजों को लेकर धीरे धीरे लोगों को किडनैप कर रहा था। दो लोगों तो वो किडनैप कर चुका था, और अब जिस तरीके से उसने अयान की सिस्टर के बारे में बताया कि उसकी सिस्टर जैसे मिस्टीरियस तरीके से गायब हुई थी, क्या 12 साल पहले की कहानी अब फिर से आके जुड़ेगी या फिर कहानी कुछ अलग ही मोड़ लेगी, मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते। तो हम सुनेंगे कहानी का आखिरी हिस्सा एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए सुनते रहिए आचार्य 90 FM पर कहानियों का उल्लेख।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आजय शब्बीर स्वागत करता हूं आपका कहानियों के गुल्लक में। हम सुन रहे थे कि किस तरीके से किडनैपर ने अब अयान को, कबीर को, सबको कंफ्यूज कर दिया है। उसने एक ऐसा सच बताया जो 12 साल पहले सिर्फ कबीर, अयान ये दोनों ही जानते थे। अब उन्हें ऐसा लगने लगा था कि ये जो किडनैपर है ये कोई बहुत करीबी है और ये कोई पर्सनल बदला ही ले रहा है। तो चलिए सुनते हैं कहानी का अगला हिस्सा कि आगे कहानी में क्या होगा। सुबह 8:10 हो चुके थे। क्राइम ब्रांच की फोरेंसिक टीम ने गिफ्ट बॉक्स के एक हिडन मेमोरी कार्ड रिकवर किया। उसमें 12 साल पुराना सीसीटीवी फुटेज था। अयान की 14 साल की बहन सारा को किसी ने फोर्सफुली नहीं उठाया था, वो खुद एक ब्लैक एसयूवी में बैठी थी। ड्राइवर का चेहरा ब्लर था लेकिन उसकी वॉच पर आरके का लोगो नजर आ रहा था। कबीर धीरे से बोला, राघव तब से तुम्हारी फैमिली को देख रहा था। अयान की आंखों में आंसू आ गए। उसने सालों तक खुद को सारा की मौत का जिम्मेदार माना था। किडनैपर का फाइनल कॉल आया 12 घंटे, डॉक नंबर 17। अकेले आना वरना आन्या और विवान दोनों मरे मिलेंगे। पुलिस ट्रैकर लगाना चाहती थी लेकिन अयान ने एक प्लान बनाया। कबीर और एटीएस टीम समंदर के रास्ते सीक्रेटली वेयरहाउस को सराउंड करेगी। अयान अकेले अंदर जाएगा और यह प्लान ठीक अब उसी तरह एग्जीक्यूट होने लगा। रात के 8 बजे थे। पुराने मुंबई पोर्ट का वेयरहाउस अंधेरे में डूबा हुआ था। दरवाजा खुला, अंदर हजारों कंटेनर्स, बीच में एक चेयर और उस पर आन्या और विवान बंधे हुए थे और सामने खड़ा था राघव खुराना, वही आदमी जिसे दुनिया मरा हुआ समझ चुकी थी। उसने मास्क उतारा और मुस्कुराया। वेलकम बैक जर्नलिस्ट, अयान ने पूछा, मेरी बहन कहाँ है? राघव हंसा, सारा ने मेरी कंपनी के अगेंस्ट एविडेंस देखा था, उसे जिंदा नहीं छोड़ सकता था। ये सुनकर अयान के अंदर खून खौल गया और उसका मन हुआ कि वो तुरंत ही राघव को खत्म कर दे। लेकिन राघव जो था वो भी अपनी पूरी प्लानिंग के साथ बैठा हुआ था अंदर। राघव ने रिमोट उठाया, पुलिस अंदर आई तो वेयरहाउस उड़ जाएगा। तभी आन्या ने अपने पैर से एक लोहे की रॉड गिरा दी। अयान समझ गया था, उसने राघव पर जंप किया, रिमोट जमीन पर गिर गया। एक जोर से पंच उसने मारा राघव के मुंह पे और फिर दूसरा पंच। वेयरहाउस में फायरिंग शुरू हो गई। कबीर की एटीएस टीम अंदर घुस चुकी थी। राघव ने भागकर क्रेन पर चढ़ गया, अयान उसके पीछे। 20 फीट की ऊंचाई, नीचे समंदर। राघव चिल्लाया, सच कभी किसी को आजाद नहीं करता। अयान बोला, नहीं लेकिन झूठ जरूर बर्बाद करता है। कबीर ने परफेक्ट शॉट लिया, राघव के सर पे उसकी बंदूक थी, उसका निशाना था और उसने एकदम परफेक्ट शॉट लिया और धड़ाम, गोली राघव के सर से आर पार हो गई। उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो सीधे पानी में गिर गया। वो रिमोट जो राघव अपने हाथों में रखकर वेयरहाउस उड़ाने की धमकी दे रहा था, वो रिमोट अब एटीएस के पास था। कबीर और उसकी टीम दोनों बच्चों को बचाने में सक्सेसफुल हो गई लेकिन राघव जो पहले से ही मृत घोषित था अब एक्चुअल में मर चुका था।
लेकिन बच्चे आजाद हो गए, राघव मर गया। राघव ने मरने से पहले ही बॉम्ब जो था वो एक्टिव कर दिया। अब कबीर ने बॉम्ब स्क्वाड को जल्दी बुलाया और बॉम्ब स्क्वाड बॉम्ब को डिफ्यूज करने में लगी थी। काउंटडाउन शुरू हुआ 59 सेकेंड, अब वो 50 सेकेंड पे आ गए, 40, 30, 20, 5, 3, फाइनली जो बॉम्ब एक्टिव था वो डीएक्टिवेट कर दिया गया। आन्या और विवान दोनों जिंदा बच गए। 3 महीने बाद राजीव मल्होत्रा ने सारा की याद में एक फाउंडेशन शुरू किया जिसका नाम था सारा फाउंडेशन, जो मिसिंग बच्चों के लिए काम किया करती थी। आयान ने अपनी डायरी की निकाली और उस पर लास्ट लाइन लिखी थी, कुछ लोग गुम हो जाते हैं लेकिन उनकी याद हमें दूसरों को बचाने की ताकत देती है। तो दोस्तों, ये एक ऐसी कहानी थी जिसमें आयान, जो एक ईमानदार जर्नलिस्ट था, उसने एक ऐसी चीज को एक्सपोज किया जो शायद समाज के लिए बहुत हानिकारक थी, लेकिन लोगों के दिल में जो बदले की भावना पनपती है, जो बदला लेने की जिद पनपती है, वो जिद कभी कभी एक ऐसे बेगुनाह इंसान को मार देती है जिसकी शायद इस पूरे कहानी में कोई गलती ना हो। यही हुआ अयान की सिस्टर के साथ भी। इंसान सच से लड़ने की कोशिश जरूर करता है अपने झूठ को लेकर, पर झूठ जो है हमेशा सच के आगे जरूर हारता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, देर होती है बट जस्टिस जरूर मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए आचार्य 90 FM पर सदा बहार गाने।

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

आज हरि 90 FM के ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। स्वाद का जायका इस शो पर मैं आरजे भारतीय सीमा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं हमारे प्यारे ऑडियंस? अरे भाई, बारिश के मौसम में इंद्रधनुष को देखा कि नहीं? वैसे आप सबकी मौजूदगी से हमारे स्वाद का जायका शो पर सतरंगी खुशियों का माहौल सा ऑलरेडी छा चुका है। अर्ज किया है बारिश का मौसम और ऑडियंस का साथ, मतलब जैसे आसमान में इंद्रधनुष और अपनेपन की बात। खुशियों का पैगाम लेकर आया अगस्त। मनोरंजन के लिए आचार्य 90 FM का परिवार मींस आप ही हो समस्त। स्वाद का जायका की होस्ट भारतीय सीमा टेंशन की स्पीड को कर देगी धीमा। अच्छा खाना खाकर हो जाइए खुश, बेकार वाले टेंशन को दूर कीजिए पुश। भारत की तरक्की से खुश हुआ आसमान, आचार्य 90 FM मतलब दोस्ती की पहचान। हाल ही में मारा हमने शानदार फोर, हर कोई मांगे आचार्य 90 FM मोर। अब ना होगा मुमकिन हमें करना इग्नोर, नाउ वी आर बेटर देन नेवर बिफोर। आचार्य 90 FM मतलब परफेक्ट एंटरटेनमेंट, खाने और गाने की यहाँ पर एंजॉयमेंट। पहली रेसिपी का नाम है शीर खुरमा, खाकर इसे अब खुश होंगे हमारे सूरमा। ईद की बधाई का लेकर संदेश, पधारे हैं और भी त्योहार लेकर खुशियों का आदेश। आचार्य 90 FM के आप संग है खास ताल्लुकात, टेस्टी शीर खुरमा से होगी इस शो की शुरुआत। तो जनाब, हमारी आज की फर्स्ट रेसिपी का नाम है शीर खुरमा। भाई, ईद को मनाने के लिए शीर खुरमा बनाया जाता है। हैदराबादी और लखनवी खाद्य संस्कृति में शीर खुरमा का एक अलग और खास स्थान है। ये एक ट्रेडिशनल और बेहद टेस्टी मिठाई है। इसे मेनली दूध, सेवई और खजूर इस्तेमाल करके बनाया जाता है। शीर मींस दूध और खुरमा मींस खजूर होता है, और इन दोनों को मिलाकर बनता है शीर खुरमा। है ना इंटरेस्टिंग जानकारी? आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। चलिए अब हम इस ट्रेडिशनल शीर खुरमा को बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। शीर खुरमा बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: फुल क्रीम दूध 1.5 लीटर, बारीक सेवई 50 से 60 ग्राम, इसे हाथ से तोड़कर छोटा करना है, खजूर 5 या 6, इसे रात भर पानी में भिगोकर पतला और लंबा काटना है, बादाम 10-12, इसे भी रात भर पानी में भिगोकर छिलका हटाना है, फिर लंबे टुकड़ों में काटना है, काजू 10-12 बारीक कटे हुए, फिर हमें चाहिए पिस्ता 10-12 बारीक कटे हुए, चिरौंजी मींस चारोली 2 बड़े चम्मच, किशमिश 1 बड़ा चम्मच, चीनी 1/2 कप या स्वाद के अनुसार, देसी घी 3-4 बड़े चम्मच, हरी इलायची पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, केसर के धागे 10 से 12, इन्हें लगभग 1 चम्मच गरम दूध में भिगोकर रखना है, केवड़ा जल या गुलाब जल 1 छोटा चम्मच, ये ऑप्शनल है, और मेन इंग्रेडिएंट ढेर सारा प्यार, क्योंकि आपकी मन की भावनाएं इस रेसिपी में उतरने वाली है। अब हम शीर खुरमा बनाने की रेसिपी की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें दूध को उबालकर गाढ़ा करना है। इसके लिए हमें चाहिए मोटे बेस वाली एक कढ़ाई। उस कढ़ाई में हमें दूध को गर्म करना है। जैसे ही उस दूध में उबाल आए, आप गैस की आंच को धीमा कर देंगे। इसे घटाकर हमें 1/3 करना है। लगभग 1/2 घंटे तक हमें दूध को पकाना है। इस दौरान करछी की मदद से हम दूध को चलाते रहेंगे। ऐसा करने से मलाई उस बर्तन के किनारों पर जमा नहीं होगी। उफ, इतना सारा काम करके मैं तो थक गई भाई साहब।
आई नीड अ ब्रेक। तब तक आप एक गाना सुन लीजिए।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब हम शीर खुरमा बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। सबसे पहले हम लेंगे मोटे बेस वाला एक पैन। उस पैन में लगभग एक चम्मच घी डालकर हमें उसे गर्म करना है। फिर उसमें कटे हुए बादाम, काजू, पिस्ता, चारोली और किशमिश डालकर हमें भूनना है। लगभग 2-3 मिनट तक हम इसे लो फ्लेम पर भून लेंगे। जब ये हल्के सुनहरे रंग के हो जाए तब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल कर रखेंगे। फिर उसी पैन में बचा हुआ घी डालकर हम भूनेंगे बारीक सेवई। इसे भी लगभग 2-3 मिनट तक हमें भून लेना है, मींस धीमी आंच पर जब इसकी खुशबू आए तब। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। हमने दूध को उबालकर गाढ़ा कर लिया था। अब हम उसमें भुनी हुई सेवइयां और खजूर ऐड करेंगे। इसे लगभग 5-7 मिनट तक पकाना है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे चीनी, ड्राई फ्रूट्स के टुकड़े और खुशबूदार इलायची पाउडर। भाई वाह, इसे लगभग 5 मिनट तक चलाते हुए धीमी आंच पर पकाना है। गैस को बंद कर दीजिए। इस प्रकार हमारा स्वादिष्ट शीर खुरमा अब हो गया है तैयार और इसे टेस्ट करने हम हो रहे हैं एकदम बेकरार। तो भाई अब हमें चाहिए कांच की एक सुंदर सी कटोरी। उस कटोरी में बड़ी नजाकत से हम डालेंगे शीर खुरमा। क्या बात, दूध में से झलकती हुई सेवइयां और साथ में ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स, जैसे कि सावन के मौसम में खिली खिली सी धूप। अब अपनों के साथ मिल बांट कर इस शीर खुरमा का लुफ्त एकदम तसल्ली से उठाइए। ऐसा करने से इस शीर खुरमा का टेस्ट और ज्यादा अच्छा लगता है। यकीन ना आए तो एक बार आप इसे ट्राई तो कीजिए जनाब। और इसके साथ आप सुनिए हमारे आचार्य 90 FM का अगला वाला गाना।

आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। इस लजीज शीर खुरमा की खिदमत में पेश है एक कविता। कविता का नाम है उम्मीदों वाली ईद। शीर खुरमा खाकर मनाइए ईद, अपनापन जताने की हमें है उम्मीद। ईद पर घर पे बनी मीठी सेवैया, हम ही हैं खुद अपने लाइफ के खेवैया। सेवैया में मिलाइए ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स, त्योहारों में छिपे हैं अपने पन के रूट्स। केसर से पाया इस रेसिपी ने रंग सुनहरा, केसर से पाया इस रेसिपी ने रंग सुनहरा। खिलाकर शीर खुरमा दोस्ती को कीजिए गहरा। खाना खिलाकर जब गहरी होगी दोस्ती, तब कभी कभी होगी हल्की फुल्की मस्ती। अपनापन दिखाने का त्योहार वाला टाइम। सब्सक्राइब कीजिए आचार्य 90 FM वंस इन अ लाइफ टाइम। भाई, त्योहारों को मनाना और लजीज खाना खाकर अपनापन जताना, ये सिलसिला तो अब चलता ही रहेगा। और यही अपनापन जताने के लिए आपको स्वाद का जायका से जुड़े रहना बेहद जरूरी है। इसलिए हमारे आचार्य 90 FM चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगली रेसिपी की ओर। हमारे महाराष्ट्र, कोंकण और तटीय क्षेत्रों में श्रावण मास की पूर्णिमा को नारली पूर्णिमा मीन्स नारियल पूर्णिमा इस पर्व के नाम से जाना जाता है। इस दिन मछुआरा समुदाय समुद्र देवता की पूजा करके उन्हें नारियल अर्पित करता है और मॉनसून के बाद सुरक्षित तरीके से मछली पकड़ने के लिए नए सत्र की शुरुआत करता है। समुद्र देवता को शांत रहने और आपदाओं से रक्षा करने की प्रार्थना इस दौरान की जाती है। रक्षाबंधन के साथ ही मनाया जाने वाला ये पर्व भाई बहन के प्रेम को भी दर्शाता है। इस दौरान पारंपरिक गीत, नृत्य और पकवानों का आनंद लिया जाता है। इन पकवानों में विशेषकर नारियल वाले चावल को बनाया और खिलाया जाता है। श्रावण पूर्णिमा के दिन बनने वाला ये नारियली भात मीन्स नारियल वाले मीठे चावल, ताजा नारियल, गुड़, चीनी और सुगंधित मसालों से बनता है। इसे बनाना बेहद सरल और आसान है। भाई, जरूरी नहीं कि आप इसे सिर्फ नारियल पूर्णिमा के दिन ही बनाएं। किसी और जश्न के दौरान भी आप इस ट्रेडिशनल नारियल के चावल की यमी रेसिपी को जरूर बना सकते हैं। ये रेसिपी खास तौर पर अपनी बनावट और स्वाद के लिए जानी जाती है। तो भाई, शुभ काम में देरी क्यों? हमारे आज के इस त्योहार स्पेशल एपिसोड में हम नारियल के चावल मीन्स नारियली भात को बना ही देते हैं। नारियली भात बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: बासमती चावल एक कटोरी, ताजा नारियल एक, नमक आधा चम्मच या स्वाद के अनुसार, ब्राउन गुड़ पौना कटोरी, केसर के धागे 10-12, लौंग 9 या 10, देसी घी 4 बड़े चम्मच, पानी 2 कटोरी, मिक्स ड्राई फ्रूट्स पाव कटोरी। मिक्स ड्राई फ्रूट्स मीन्स काजू, बादाम, किशमिश, चिरौंजी मीन्स चारोड़ी वगैरह। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ। यहाँ मिक्स ड्राई फ्रूट्स के बदले मिल्क मसाला को इस्तेमाल मत कीजिए, अदरवाइज इस नारियली भात का लुक्स थोड़ा सा बदल जाएगा। इस बात का आप खास ध्यान रखिए। रेसिपी को शुरू करने से पहले हमें ताजा नारियल को कद्दूकस कर लेना है। हमें लगभग 1/4 कटोरी भर के ये नारियल चाहिए। फिर चावल को अच्छे से धो लेना है। चावल को पानी से धोने के बाद उसका पानी हमें हटाना है। उसके बाद लगभग 45 मिनट के लिए इसे अलग से रख दीजिए।
इस तरह से भिगो कर रखे हुए चावल पकने के बाद बड़े और खिले खिले से दिखते हैं, और इस वजह से हमारा प्रेजेंटेशन थोड़ा प्रोफेशनल टाइप हो जाएगा। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक क्विक ब्रेक, ब्रेक के उस पार आपसे और बातें होंगी। स्टे ट्यून्ड।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। ब्रेक पर जाने से पहले हम नारळी भात बनाने की तैयारी कर रहे थे। अब हमें ब्राउन गुड़ को भी कद्दूकस कर लेना है। फिर एक पैन में हम गरम करेंगे देसी घी। उस देसी घी को हमें लो फ्लेम पर गरम करना है। अब हम उसमें सारे ड्राई फ्रूट्स को भून लेंगे। लगभग 3-4 मिनट तक हम इसे भूनेंगे। फिर इन ड्राई फ्रूट्स को हम एक प्लेट में निकाल देंगे। उसके बाद हम लेंगे मोटे बेस वाली एक कढ़ाई। उसमें धीमी आंच पर हम गरम करेंगे 3 बड़े चम्मच देसी घी। जब वो घी गरम हो जाए तब हम उसमें लौंग डालेंगे। इसे 3-4 मिनट तक लो फ्लेम पर हमें भूनना है। जब लौंग फूल जाएगी तब उसमें से खुशबू आने लगेगी। फिर हम उसमें ऐड करेंगे भिगो कर रखे हुए बासमती चावल और थोड़ा सा नमक भी। इसे एक बड़े चम्मच की मदद से हमें मिक्स करना है। उसके बाद उन चावलों में हम डालेंगे गुनगुना पानी और केसर के धागे। फिर हम गैस की फ्लेम को तेज करेंगे। जैसे ही चावल में तेज उबाल आएगा तब हम गैस की फ्लेम को धीमा करेंगे थोड़ी देर के लिए। उन चावलों के ऊपर हम ढक्कन रखकर इसे पकाएंगे। थोड़ी देर के बाद चावल सारा पानी सोखकर पूरी तरह से पक जाएंगे। इस बीच एक छोटे पैन में गुड़ और नारियल डालकर उसे मिक्स कीजिए। हमें इसे धीमी आंच पर पकाना है। थोड़ी देर बाद गुड़ पिघलना शुरू होगा। आहा, क्या बात! नारियल और गुड़ के पकने की खुशबू से सारा घर महक उठेगा और घर के लोगों के टेस्ट बर्ड्स अब एक्टिव मोड की तरफ प्रस्थान करने लगेंगे। मींस सबको उत्सुकता होगी कि भाई हो क्या रहा है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो भाई, पके हुए गुड़ और नारियल के इस मिश्रण को हम चावल में मिक्स करेंगे। इस दौरान आप ध्यान रखें कि चावल के दाने टूटे नहीं। एकदम हल्के हाथों से इसे मिक्स करना है। आप चाहे तो इसे मिक्स करने के लिए काटा चम्मच को यूज कर सकते हैं। हम इस मिश्रण को ढककर धीमी आंच पर लगभग 4-5 मिनट तक पकाएंगे। जनाब जरा रुकिए तो, मेरी बात को सुनिए तो, इतनी भी क्या बेकरारी भाई, अभी डेकोरेशन वाला पार्ट बाकी है। अब हम लेंगे एक सुंदर सी प्लेट। उस प्लेट में हम डालेंगे तैयार नारियल का मीठा चावल। इसे सजाने के लिए उसके ऊपर हम भुने हुए ड्राई फ्रूट्स को फैला देंगे। हमारे महाराष्ट्र का नारियल चावल मींस नारळी भात त्योहारों के व्यंजन के रूप में अब हो गया है तैयार और इसे टेस्ट करने हमारे प्यारे ऑडियंस जी हैं एकदम बेकरार। तो भाई देर किस बात की, आप नीचे जमीन पर बैठ जाइए। अपने साफ और धुले हाथों से इस गर्मा गर्म नारियल वाले चावल का एक निवाला उठाइए। अपनी उंगलियों से उस चावल के टेम्परेचर और टेक्सचर को फील कीजिए। फिर एकदम नजाकत से एकदम आराम से उस निवाले को अपने मुंह में डालिए। उस चावल का अरोमा और उसका टेस्ट आपके चेहरे पर मिलियन डॉलर वाली स्माइल को जरूर लाएगा। यकीन ना आए तो इस नारळी भात को आप एक बार बनाकर तो देखिए। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि इसे बनाकर और अपनों के साथ मिल बांट कर खाने से आप एकदम खुश हो जाएंगे। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। इस नारळी भात की तारीफ में पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है नारियल वाले मीठे चावल। रक्षाबंधन के त्योहार पर मिठाई में डाला नारियल। त्योहार को जरूर मनाएंगे,
शैतान भाई और बहन अड़ियल। आया पूर्णिमा का पर्व ये पावन, खुशियों को मनाने बनाया हमने मीठा नारियल चावल। नारियल का साथ देने हमने डाला गुड़, इसकी मिठास ऐसी कि सुधार देगा आपका मूड। स्वाद का जायका ऐड करने डाली हमने लौंग। आचार्य 90 FM पर आप जरूर सुनिए सॉन्ग। मीठा नारियल चावल मींस स्वाद के संग सेहत। सिर्फ हेल्दी खाना खाने की अब डाल ही लीजिए आदत। सावन का महीना लेकर आया खुशियों की आहट। स्वाद का जायका शो मतलब लजीज खाने की चाहत। अब हम सुनते हैं एक क्विक रीकैप। आज के इस एपिसोड में सबसे पहले हमने बनाई एक खास रेसिपी, शीर खुरमा नाम की। इस रेसिपी में बारीक सेवई, दूध, खजूर और मिठास भरी शक्कर को देसी घी के साथ मिलाकर हमने ईद को सेलिब्रेट किया। किया कि नहीं ऑडियंस जी? जी बिल्कुल किया। इस प्यारी सी रेसिपी में ड्राई फ्रूट्स मिलाकर हमने थोड़ी सी सजावट भी की। उसके बाद हमने नारियल पूर्णिमा का पावन पर्व भी शानदार तरीके से सेलिब्रेट किया। ताजा नारियल, बासमती चावल, गुड़ और लौंग को घी का तड़का लगाकर हमने एक खास महाराष्ट्रीयन रेसिपी बनाई। नारळी भात नाम से फेमस रेसिपी को रक्षाबंधन स्पेशल सेलिब्रेशन के तौर पर हमने आचार्य 90 FM के हमारे खास ऑडियंस के लिए बनाया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की रेसिपीज जरूर पसंद आई होंगी। अगर आपके पास भी कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपीज है तो हमें बताइए, और अगर आपको अपनी पसंद का कोई नगमा सुनना हो तो वो भी हमें जरूर बताइए। अच्छा खाना खाइए और आचार्य 90 FM के गीत गुनगुनाइए। लेकिन पहले हमारे आचार्य 90 FM चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, अब समय हो गया है आप सबसे विदा लेने का। वापस मिलने का ये मेरा वादा, सिर्फ वादा नहीं, एकदम पक्का वादा। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आरजे भारतीय सीमा की ओर से आप सबको सी यू सून वाला मेरा बाय बाय।

0: 3 से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए।
1: Seven, six, five, four.

0: नमस्ते दर्शकों, आज हम सेलिब्रिटी शो में हमने आमंत्रित किया है नीलम गोयल जी को. नीलम जी नमस्ते.
1: नमस्ते.
0: आपका स्टूडियो में भी स्वागत है और हमारे आचार्य 90 FM पर स्वागत है और सेलिब्रिटी शो में भी आपका स्वागत है. नीलम जी गोयल एक स्नातक, आगरा यूनिवर्सिटी की स्नातक रही है और कुकिंग क्लासेस, लिखना पढ़ना, समाज सेवा, सोशल वर्क, इन स्लम एरिया इनका कार्य रहा है. काउंसलिंग फॉर कैंसर पेशेंट्स, लोगों से मिलना और मुक्त छंद की कविताएं लिखती है, कृष्ण के भजन गाती है और आखर मुक्ता साहित्यिक पत्रिका में स्वरचित कविताओं का उनका गीत का छपना हुआ है. कहे अनकहे शब्दों का कैनवास इस कहानी संग्रह में स्वयं रचित कहानी मुट्ठी भर सपने का भी छपना हुआ है. साहित्यिक प्रतियोगिताओं में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित 21 सर्वश्रेष्ठ कहानियां पत्रिका को उन्होंने जीता है और पतंजलि योगपीठ से प्रमाणित योग शिक्षिका भी रह चुकी है. बहुत सारे ये सब आप वही पूछना चाहूंगी, इतना सारा आप व्यस्त रहती है, पूरा 24 घंटे भी आपको कम पढ़ते रहेंगे, तो ये सब आप मैनेज कैसे करती है वो शुरू में करना?
1: बस मेरे को ना कुछ है कि मुझे कुछ ना कुछ करते रहना है
0: जी.
1: और इन सब चीजों से मैं बचपन से थोड़ी प्रेरित रही हूँ, क्रिएटिव मैं शुरू से ही थी
0: जी.
1: और ये जो पढ़ने का शौक मुझे लगा वो मेरी मदर से लगा.
0: अच्छा.
1: क्योंकि वो उस समय भी ना ये कौन कौन सी पुस्तिकाएं होती थी, धर्मयोग.
0: हाँ.
1: और ये कादम्बिनी, इस तरह की मतलब हाई लेवल की बुक्स पढ़ती थी. वो 12th पास थी उस समय की.
0: हाँ.
1: लेकिन कोई जॉब नहीं किया था.
0: हाँ.
1: तो बस मुझे वो उनको पढ़ते देखती थी और धीरे धीरे धीरे धीरे मुझे मेरे को रीडिंग करने की जो मिल जाता था, धर्मयोग कोई भी पत्रिका अखबार मतलब जो भी मिल गया. हाँ. वो मुझे उसको पढ़ना है.
0: वाह, वेरी नाइस. आपके साहित्य के बारे में हमें बहुत कुछ जानना है, लेकिन आप कविताएं जैसे हमारी पहली मुलाकात में आप मैं जान गई थी, आप बहुत कथा सुंदर से प्रस्तुत करते हैं, कविताएं भी लिखती हैं, तो जाहिर सी बात है अभी आपने माँ का जिक्र किया तो हमारी सबकी शुरुआत तो माँ से ही होती है, तो माँ के ऊपर आपने जो कविता लिखी है वो हमें सुनाइए प्लीज.
1: सबका धन्यवाद. नमस्ते. माँ केवल एक शब्द ही नहीं है, माँ बल्कि असीम शक्ति, ममता और आस्था का स्वरूप है. जब जीवन में अंधेरा छा जाता है तो माँ का नाम ही एक दीपक बनकर हमारे जीवन में उजाला करता है और रास्ता दिखाता है. आज उसी जगत जननी शक्ति स्वरूपा माँ के चरणों में, श्री चरणों में अपनी भावनाओं का ये छोटा सा भजन अर्पित करने जा रही हूँ. श्रद्धा भक्ति के साथ आप सब जुड़िए. पधारो माँ पूजा को, पधारो.

0: बहुत सुंदर बनाया है, क्या बात
1: पहन लो प्यार का गजरा, बहुत सुंदर बनाया है, पधारो माँ पूजा को, पधारो माँ पूजा को।

0: क्या बात है, वेरी नाइस. जय माता दी. मेरा मन तो गंगा मैया के यहाँ पहुंच गया वाराणसी में, क्योंकि कितनी सुंदर, मतलब हम वो गंगा मैया को माँ कहते, पुकार के बुलाते हैं, और जो गंगा आरती का जो विलोभनीय दृश्य हमें अभी आपकी ये कविता में, ये पद में साकार हुआ, वेरी नाइस, वेरी मतलब वेरी टचिंग. अभी शुरू करते हैं कि आपका जो साहित्य प्रवास है, आपने जैसे बोला कि माँ बहुत बुक्स घर में रहते थे, तो आप पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए. मतलब जो शैक्षणिक, जो भी हमारा स्कूल का पढ़ना रहता है वो अलग, और आपको हिंदी में ज़्यादा रुचि है, तो आपने बीए इन हिंदी भी वैसे किया है, तो हिंदी के प्रति लगाव या फिर आस्था, आपको कौन से लेखक पसंद है हिंदी के, उसके बारे में और क्यों पसंद है?
1: मेरे को मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ बहुत पसंद हैं
0: जी,
1: और रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानियाँ बहुत, क्योंकि ये ना हमारे आसपास जो दिखता है उन सब से जुड़ी हुई है, सामाजिक समस्याएं, स्त्री की समस्याएं, और समाज में जितनी भी व्यभिचार या जितना उत्पीड़न होता है, तो उन सब के ऊपर जो कहानियाँ लिखी है, तो मुझे वो बहुत टचिंग
0: लगती है,
1: भावपूर्ण होती है, और मेरे को ना कहीं गहरे तक, ऐसे ही ना क्या हुआ कभी मैंने कहीं किसी से कुछ सुना, मेरी बड़ी दीदी है तो वो भी साहित्यिक में बहुत
0: अच्छा
1: रुचि रखती हुई है, बहुत ज्यादा. हाँ
0: अच्छा.
1: तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ मेरे को उसमें, मैं लिखने लगी, लिखते लिखते क्या हुआ, जुहू में रहते थे हम लोग, तो वहाँ कृष्ण मंदिर था
0: जी,
1: वॉकिंग डिस्टेंस पे. तो मैं सडनली, मैंने सोच लिया था कि मैं वहाँ जाके पहले दर्शन करके फिर ही नाश्ता किया करूंगी. वहाँ जाके जब मैं पिन ड्रॉप साइलेंस होकर शांति के साथ जब बैठती थी ना, तो बस भगवान का चेहरा देखती थी. तो उस चेहरे को देखकर मेरे को अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो मैं जब उनको देखती थी ना, तो मेरे को रोना आता था.
0: अच्छा.
1: और रोते रोते धीरे धीरे धीरे धीरे वो भाव उत्पन्न होने लगा. और पता लगा मैं तो वहाँ बैठे बैठे मोबाइल में ही उस समय जो आता था उस समय लिखती थी.
0: अच्छा.
1: फिर घर आकर जब उनको सुनाती थी तो सबको बहुत अच्छा लगता था, मुझे भी लगता था ये कैसे लिखा गया.
0: हाँ.
1: मतलब मुझे ऐसा लगता था जैसे किसी और ने लिखा है
0: जी.
1: फिर वो लिखने लगी, फिर धीरे धीरे मैं फिर उस स्पिरिचुअल ग्रुप से जुड़ी.
0: अच्छा.
1: फेसबुक पर अब उसमें जो था मैं अपनी ये रचनाएं डालने लगी. तो मोस्टली मैं तब कृष्णा के लिए ही लिखती थी.
0: अच्छा.
1: लिखते लिखते फिर धीरे धीरे कुछ और भी भाव होने लगा, जैसे मैं कभी गार्डन में गई.
0: हाँ.
1: तो दो तीन लेडीज जैसे बैठी हुई थी वहाँ.
0: हाँ.
1: तो वो बहुत परेशान, उन्होंने अपनी कुछ स्टोरी बताई.
0: हाँ.
1: तो मतलब मैं भी सेंट्री हो जाती थी कुछ, मैं भी ना ऐसी हूँ कि जल्दी मेरे भाव को छू जाती है किसी भी बात. तो उन्होंने जब वो सुनाती थी तो मैं, मुझे लगता था कि मुझे इनके लिए कुछ लिखना चाहिए. तो मैं उसी के ऊपर अपने शब्दों में

ब्रेक के बाद आप सभी से जुड़ रहे हैं सेलिब्रिटी शो में। हमारे साथ आज के सेलिब्रिटी है नीलम गोयल मैडम, और जो हमें बहुत कुछ आज

0: ऑफिस का भी काम देखना, दोनों स्तर पर हम लोग काम करते हैं, लेकिन बेटियों को वो स्थान नहीं मिलता जो आज के समाज में मिलना चाहिए, उसकी ज़रूरत है। और उसके ऊपर जो आप मैंने आपकी सुनी है वो कविता मुझे बहुत पसंद है, तो मैं चाहती हूँ हमारे आचार्य 90 FM के दर्शकों को भी वो सुनवाएं। तो ज़रूर आपने वो आप बेटी के दर्द दुख को समझती है और उसके बारे में आपने लिखा है, तो वो ज़रूर हमें सुनवाइए।
1: जी बिल्कुल।

0: और एक ऐसा प्यारा रिश्ता है जो जन्म से पहले ही दिलों से जुड़ जाता है। आज मैं उसी अनमोल रिश्ते बेटी पर अपनी भावनाएं प्रस्तुत करती हूँ। बेटी ईश्वर की सबसे सुंदर रचना, जिसका जिसकी हंसी से घर आंगन में बसंत उतर आता है।
1: क्या बात,
0: उसकी हंसी में ही संसार की रौनक बसती है और जिसकी आंखों में भविष्य के अनगिनत सपनों की किरणें झिलमिलाती हैं। वो केवल किसी घर की लाड़ली ही नहीं है केवल, बल्कि हर समाज की वो आत्मा है, हर संस्कृति की पहचान है। बेटी के रूप में ही संवेदना जन्म लेती है और ममता अपना अर्थ पाती है और भविष्य अपनी दिशा।
1: वाह क्या बात,
0: आज बेटी दिवस पर हमें ये स्मरण करना है कि बेटी का सम्मान केवल एक दिन का उत्सव नहीं है, बल्कि जीवन भर निभाया जाने वाला वो संस्कार है। हर बेटी को पढ़ने का, लिखने का, अपनी इच्छा से उड़ने का, स्वयं को पहचानने का अधिकार है
1: जी।
0: क्योंकि जब एक बेटी आगे बढ़ती है तो एक पूरा युग प्रकाशमान होता है
1: जी। बिल्कुल,
0: आज की बेटी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, विज्ञान में, साहित्य में, खेल में, राजनीति में, पाक कला में, मतलब कोई ऐसा स्थान नहीं है कि जहाँ वो पहुंची नहीं है
1: जी।
0: हर जगह उसने अपनी पहचान बनाई है, उसकी उड़ान आसमानों को छू रही है। परंतु विडम्बना ये है कि कुछ स्थानों पर आज भी बेटी के साथ भेदभाव, अत्याचार और शोषण का सामना उसको करना ही पड़ता है
1: जी।
0: ये सब हमें झकझोरता है, मन को परेशान कर देता है और सोचने के लिए विवश करता है और हमें सजग भी करता है
1: जी।
0: कि कोई भी बेटी अब भय और अन्याय की छाया में ना रहे। बेटी का सम्मान, सुरक्षा, उसकी देखभाल, स्वावलंबन और हमारा नैतिक, सामाजिक, मानवीय दायित्व तो है कि बेटी आस्था भी है, प्रेरणा भी है, उससे ही धरती की मुस्कान जीवित है। इसलिए बेटी केवल उत्सव नहीं, एक चेतना है, एक संकल्प है। बेटी पर कुछ पंक्तियां लिखने का प्रयास किया है जो आपसे साझा करती हूँ। नन्ही सी हंसी में उजियारा बसे
1: जी,
0: हर सपने में उसका सितारा बसे। न रोको उड़ाने, न रोको उड़ाने ये फलक छूले, न रोको उड़ाने ये फलक छूले, हर बेटी में ही तो सारा जहां बसे।
1: वाह,
0: बेटी मुस्कान है, बेटी अरमान है, जीवन की हर राह में वरदान है। आओ प्रण करें आज हम सभी हर बालिका का सम्मान, हमारा मान।
1: वाह, यस, वेरी नाइस। अभी ये कविता तो हम सुन रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आप कथाएं भी लिखती हैं, तो आपकी कथा कहाँ और कथा और कविता कहाँ कहाँ प्रस्तुत करती हैं?
0: कथाएं और कविता, ये हमारा एक साहित्यिक ग्रुप है, उसमें हाँ, भेजती हूँ, कुछ किताबों में भी छपती हैं। और मैं बहुत पहले जब मैं शादी होकर ही आई थी
1: हाँ,
0: तो वहाँ हम लोग होली का
1: त्योहार मनाते
0: थे
1: जी।
0: होली के बाद हमारे यहाँ 8 दिन तक ये लेडीज को बुलाना और
1: अच्छा,
0: खिलाना पिलाना उस सब मनाते थे, जिसको जो रुचि होती थी वो आपस में
1: हाँ,
0: शेयर करता था
1: हाँ।
0: तो इसी तरह से एक बार हमने बुलाया हुआ था सबको
1: हाँ,
0: और मैंने उन्हीं लेडीज के ऊपर एक कुछ छोटी सी कहानी
1: अच्छा,
0: सुनाई और वो मेरी फिर अमर उजाला अखबार में
1: क्या बात
0: निकली निकली। तो फिर लोगों को पता लगा कि आप लिखती भी हो। क्या होता है ना, हम लिखते तो हैं
1: हाँ,
0: लेकिन हमारी जो हमें उत्साह जो मिलता है वो औरों से मिलता है
1: जी,
0: जो पढ़ते हैं
1: हाँ।
0: जब हमारा उत्साह वर्धन होता है ना, तो हमारा और इच्छा करती है हाँ, शायद हमने कुछ अच्छा लिखा,
1: अच्छा
0: है,
1: लिखा है,
0: कुछ और इससे भी अच्छा करके दे
1: हाँ।
0: तो बस इसी तरह से धीरे धीरे धीरे धीरे मेरा लिखने का शौक बना। फिर और मैं जिस परिवार में से दूसरे परिवार में गई थी, तो वहाँ का माहौल बिल्कुल अपोजिट था। तो वहाँ क्या होता था, मतलब बहुत सिंपल, बहुत अच्छे लोग हैं हमारे
1: हाँ,
0: वो भी, लेकिन जो रहन सहन और जो ख्यालात थे वो थोड़े अलग थे
1: जी।
0: मतलब इतना डिफरेंस था कि मेरे को वो लोग बिलायती बहू कहने लगे थे।
1: अच्छा
0: पर एक समय ऐसा आया कि जब उन्होंने मेरे विचारों को सुनते थे
1: हाँ,
0: मेरी सेवा को देखते थे, तो धीरे धीरे मेरी ये उन्होंने लिखी हुई चीजें भी पढ़ते थे, तो उनको उन्होंने फिर मतलब इतना मान सम्मान दिया कि जो मेरे बड़े लोग थे ना
1: हाँ,
0: वो भी मेरे को ऐसे इनवाइट करते थे, मैं आपको वो किस्से में बता नहीं सकती
1: जी,
0: कि वो सबके बीच में मेरे को किस तरह से खड़ा करके फिर मेरा बताते थे लोगों को।
1: अच्छा अच्छा
0: तो इस तरह से मेरा उत्साह वर्धन बहुत हुआ
1: हाँ,
0: फिर मैंने साहित्यिक ग्रुप से

0: थी तो उसमें लिखना शुरू किया। तो एक बार मैंने अपनी फ्रेंड के ऊपर संस्मरण लिखा, जब संस्मरण लिखा तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगा और बोले ये तो मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है मैं पढ़ रही हूँ तो जैसे मैं सामने रेखा चित्र कर दिया हो ऐसा लग रहा है। तो उससे मैं बहुत प्रेरित हुई, उत्साह वर्धन हुआ। फिर उन्होंने एक बोले कि आपको कहानियां लिखनी है, मैंने ऐसी कहानियां नहीं लिखी है। तो बोलते हैं कि नहीं नहीं आप कोशिश कीजिए, आप लिखोगी, आप लिख सकते हो। फिर मैंने दो कहानियां लिखी जिसमें से एक मेरी पास हुई और उन्होंने इस कहे अनकहे शब्दों के कैनवास में छपी। इससे पहले क्या था ना, छोटी छोटी बुक्स में छोटी छोटी उसमें निकल रही थी, जैसे ये है आखर लिखता, इसमें ये वर्ष में तीन निकलती थी।
1: अच्छा,
0: तो उसमें एक बार एक कविता निकली, एक बार वो मेरी कहानी निकली। अच्छा। बस उससे मैं प्रेरित हुई और फिर मैंने लिखना शुरू किया।
1: जी, अभी आप सामाजिक कार्य से भी जुड़े हैं, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे कि आप कैंसर पेशेंट से ज्यादा मतलब उनसे ज्यादा मिलते हैं, तो वो सामाजिक कार्य की रुचि आपने कैसे?
0: वो क्या था ना, मेरे अंदर ना ये शुरू से सेवा का भाव था।
1: अच्छा,
0: जब मैंने ग्रेजुएशन करके चुकी तो एक महीने की छुट्टी थी
1: जी,
0: और शायद मेरी को देखने वाले भी कुछ लोग आने वाले थे घर पर। तो उस बीच मैंने घर में कहा कि अभी तो मुझे शादी नहीं करनी है, मेरे को जो है
1: पढ़ना
0: लॉ करना है।
1: अच्छा,
0: मुझे आगे लॉ करना है। तो सब लोग बोले कि हाँ हाँ हो गया लॉ, सब हो गया।
1: अच्छा,
0: बस अब क्या और क्या करना है? मैंने कहा मेरे को अच्छा स्कूल में टीचिंग करनी है।
1: अच्छा,
0: तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा विदाउट पे करनी है। पास में एक स्कूल था छोटा सा और उसमें मैं जाने लगी, वन मंथ मैंने पढ़ाया। अब उसमें जो था एक बच्चा भी था, तो वो धीरे धीरे मुझसे बहुत अटैच हो गया और बोला दीदी मैं आपसे और भी पढ़ना चाहता। मैंने कहा ठीक है तुम घर आ जाया करो।
1: अच्छा,
0: वो घर आने लगा, मैंने उसको पढ़ाया, उसका नंबर्स बहुत अच्छे आए। कुछ नहीं, वो हो गया, मेरी शादी भी हो गई। 25 साल बाद मेरे पास कॉल आती है उसकी।
1: अच्छा,
0: हेलो दीदी बोल रही है। मैंने कहा आप कौन बोल रहे हैं? मैं राजू बोल रहा हूँ। मैंने कौन राजू? अरे दीदी आप भूल गई, मैं वही राजू हूँ जिसको आपने घर पे बैठ के पढ़ाती थी आप। अच्छा। आज मैं इस पोस्ट पर हूँ, आया है, नौकरी कर रहा हूँ बेंगलोर में। मैं
1: क्या बात है,
0: मतलब मैं वो पढ़ी थी उस समय खुशी की वजह से। तो ये मेरे को ना शुरू से था। और इसके बाद फिर मेरी जब शादी हो गई तो एक पास में एक दूध जिनके यहाँ से आता था, जैन मंदिर के बराबर में उनकी दूध का गाय वगैरह रखते थे, तो वो जब लेते थे उसे, तो उसके एक भाई की ना डेथ हो गई थी, उसके बच्चे थे, तो वो परेशान थे और मुझे लगता था शायद अभी इनके घर वाले इन बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। तो मैंने उनको बोला मेरे बच्चे स्कूल चले जाते हैं, मेरे दो बच्चे हो चुके थे तब तक, कि वो चले जाते हैं तुम इस बीच आ जाए करो, मैं काम निपटा के 11 बजे करी तुमको टाइम दूंगी।
1: अच्छा,
0: उसको इतना अच्छा पढ़ना आ गया कि उसने 12th पास किया।
1: क्या बात है।
0: और मतलब वो अपनी लाइफ में शादीवादी हो गई, सेट हो गए। तो मुझे ये शुरू से कुछ आदत थी। अब यहाँ जब इन्होंने VRS लिया बैंक से, स्टेट बैंक में मेरे हस्बैंड
1: काम करते थे,
0: तो जब उन्होंने VRS लिया तो सब लोग बोले कि अरे इतने वो ले रहे हैं और आप परेशान हो जाओगी, घर में रह के क्या करोगी, ये सारे दिन चाय बनवाएंगे और कॉफी बनवाएंगे, सारे दिन तुम बिजी रहोगी, परेशान हो जाओ। मैंने कब जो होगा, मैंने उनको समझा लिया अगर वो इसमें खुश है VRS लेने में तो मुझे कोई हर्ज नहीं है। तो उन्होंने जब लिया तो यही लगा कि अब हम क्या करें, क्योंकि टाइम एक्सेस में रहता था, सुबह सुबह टिफिन बना के नहीं देना और बच्चे भी बड़े हो गए, अपनी नौकरी में चले गए थे बच्चे। तो ये जो राम मंदिर का ये जब हुआ तो प्रसाद देने कुछ लोग घर पर आए, जब घर पर आए तो मैं हमने उनकी आरती उतारी।
1: अच्छा,
0: आरती उतारी और घर पे बिठा के उनको पानी वानी देने के लिए कहा, तो वो बहुत खुश हुए, RSS के लोग थे
1: जी।
0: जब वो उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि कुछ दिन बाद उनका कॉल आया कि ऐसे ऐसे आप लोग उससे जुड़िए। मैंने कहा ठीक है जुड़ेंगे, आप लोग पहले घर पर आओ। ये हमको पता था कि RSS के लोगों को घर पे बुलाना चाहिए
1: जी।
0: तो वो लोग धीरे धीरे हमारे यहाँ आने लगे, कभी लंच पर कभी ब्रेकफास्ट पर
1: जी।
0: उन्होंने कहा, मैंने ऐसी बोला, मैंने कहा मेरे को ना कुछ करने का मन करता है अभी, मैं ऐसा लगता है मैं अभी कुछ कर नहीं रही, बेकार हूँ। तो वो बोले ठीक है ना, आप ऐसे ऐसे करके आइए हनुमान टेकड़ी पर साइन कोलीबारा में, वहाँ कैंसर पेशेंट्स का है, और आप आइए वहाँ आइए, आपको अच्छा लगेगा, फिर आपको जिम्मेदारी देंगे।
1: ठीक है,
0: वहाँ गए। वहाँ गए तो क्या हुआ, वहाँ पेशेंट्स थे, मैं सबसे मिलने जाती थी। फिर उन्होंने एक रूम का मेरे को चार्ज दे दिया।
1: अच्छा,
0: कि आप इन लोगों से कांटेक्ट में रहिए, देखिए इन पे क्या चीज़ है, इनको मेंटली सपोर्ट कीजिए। तो हम उनसे जाके कभी कभी उनको भजन सुनाती थी, कभी उनसे बात करती थी, क्योंकि क्या
1: बात करने से भी वो खुल जाते हैं,
0: क्या है ना,
1: इमोशनली अच्छे रहते हैं।
0: क्या है ना, पेशेंट्स जो है, मुझे लगता है कि वो
1: डिप्रेशन
0: से नहीं जाता, वो सोच कर चला जाता
1: है जी।
0: फिर हम लोग की एनकोलॉजी को लेकर क्लासेस हुई, ट्रेनिंग हुई हमारी, तीन तीन दिन की क्लास चलती थी कि उनको साथ हम लोग को कैसे बिहेव करना है, कैसे नहीं करना है, क्या उनके सामने नहीं कहना है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता। कुछ दिन तो क्या हुआ, जब हम घर आते थे ना तो मैं सो नहीं पाती थी।
1: उनका दुख दर्द देख
0: सो नहीं पाती थी, तो ये भी समझाते थे, उन लोगों ने समझाया देखो ऐसे सेवा नहीं हो सकती, आपको यही छोड़ कर जाना होगा, यही छोड़ कर जाना होगा जो भी देखा है उनके साथ। आप अच्छा एटीट्यूड कीजिए, अच्छा व्यवहार कीजिए, लेकिन घर जाकर नहीं लेना है, पर आप पढ़ जाओगे क्या फायदा है।
1: बराबर।
0: फिर बस वो धीरे धीरे वहाँ पता लगा हमको, स्लम एरिया में स्कूल्स खोल रखे थे उन लोगों ने, फ्री ये शाला फ्री चला रखी थी स्लम एरिया के बच्चों के लिए। तो वहाँ उन लोगों ने, मैं गई देखने, अभी मैं स्लम एरिया में नहीं गई थी,
1: राइट,
0: लेकिन मतलब मेरे को दिक्कत भी लगती थी, मुंह बंद करके जाती थी कई बार, और कई बार बहुत कीचड़ नीचे भी होती थी, तो शूज पहन के साड़ी पहनना बंद कर दिया था, टाइट कपड़े पहनना शुरू कर दिया था, गिरे ना कहीं, और वो बिल्कुल ऐसी रेलिंग होती थी कि देखकर लगता था
1: कैसे रहते हैं
0: हम लोग, इतने बड़े बड़ों में रह के लगते हैं हमको ये परेशानी, वो लोग कैसे रह रहे हैं। तो धीरे धीरे करके मतलब मैं पर्सनली उन लोगों से इतनी अटैच हो गई, उन लोगों ने फिर मेरे को निरीक्षण बना दिया।
1: अच्छा,
0: 35 शालाओं का निरीक्षण था। तो जो हम लोगों को, हम, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जाते थे, बस इसी तरह से धीरे धीरे करके
1: वो समाज कार्य बढ़ता गया आपका।
0: किशोरी वर्ग शुरू किया फिर हम लोगों ने, जैसे किशोरी बच्चों के लिए 8 वर्ष से और 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए, जैसा कि आजकल माहौल चल रहा है, तो उनको सेव करना, उनको गाइड करना है,
1: राइट,
0: तो
1: वो भी करते हैं।
0: तो बस सब काम होते थे घर के भी, और बहुत एक्टिव रहती थी, ऐसा नहीं था कि कोई काम छोड़ के जा रही हूँ, का भी सारा काम होता था
1: बराबर,
0: और आके बस
1: और आप ज्यादा
0: सोते थे,
1: मतलब
0: होता था कि हमने हमारे
1: कुछ
0: हाथ से
1: तो
0: कुछ
1: किया।
0: तो हुआ
1: जे. तो अभी अंत में आपकी एक सुंदर सी कविता वापस सुनते हैं और ये जो शो का अंत करते हैं, ठीक है?
0: ठीक जी।
1: आप कौन सी कविता पढ़ना चाहोगे? जिंदगी के बारे में, अभी हम जिंदगी के बारे में इतने
0: जिंदगी
1: के बारे में सुनते हैं,
0: कर लेगी छोटा सा है
1: जी,
0: चलेगा
1: या
0: जिंदगी है तो सब कुछ है, कहते हैं ना
1: जी
0: जिंदगी, इसकी ये मैंने कुछ लाइंस लिखी हैं, बहुत छोटी सी, शायद आपको पसंद आए
1: जी। बिल्कुल।
0: जिंदगी तेरे लिए मैं प्यार लाई हूँ, जिंदगी तेरे लिए मैं प्यार लाई हूँ, ये घड़ी, ये धूप, ये दिन, ये रात, कल भी आई थी,
1: आज भी आई है,
0: कल भी आई थी और आज भी आई है, किसी को ये सिंहासन देगी और किसी के लिए बेबसी देगी, ये सूरज जो सिर पे चढ़ा है शाम को पाँव में उतर जाएगा, इसी तरह ये सांस का राही क्या पता किस पाँव पर रुक जाएगा,
1: क्या बात,
0: इसी तरह ये सांस का राही क्या पता किस तरह किस पांव पर रुक जाएगा, गीत गाओ स्नेह का संसार लाई, जिंदगी मैं तेरे लिए
1: प्यार लाई हूँ, क्या बात,
0: नई आशा, नए सपने, नए संकल्प, मैं बुलंदी का सघन विस्तार लाई हूँ, मैं बुलंदी का सघन विस्तार लाई हूँ, मुस्कराओ आज मैं उपहार लाई हूँ, जिंदगी तेरे लिए
1: मैं प्यार लाई हूँ, क्या बात है। कितना पॉजिटिव अप्रोच है टुवर्ड्स लाइफ, मतलब जिंदगी के ऊपर अपने बहुत अच्छा अच्छे से लिखा है, और आज हमारे आचार्य 90FM से आप जुड़े हैं, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप ऐसे ही लिखते रहिए, मिलते रहिए और हमें हमेशा कुछ ना कुछ देते रहिए। थैंक यू सो मच जी।

0: नमस्ते दर्शकों, आज हम सेलिब्रिटी शो में हमने आमंत्रित किया है नीलम गोयल जी को। नीलम जी नमस्ते,
1: नमस्ते।
0: आपका स्टूडियो में भी स्वागत है और हमारे

0: कहानी मुट्ठी भर सपने का भी छपना हुआ है। साहित्यिक प्रतियोगिताओं में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित 21 सर्वश्रेष्ठ कहानियां पत्रिका को उन्होंने जीता है और पतंजलि योग पीठ से प्रमाणित योग शिक्षिका भी रह चुकी है। बहुत सारे ये सब आप वही पूछना चाहूंगी, इतना सारा आप व्यस्त रहती है, पूरा 24 घंटे भी आपको कम पढ़ते रहेंगे, तो ये सब आप मैनेज कैसे करती है वो शुरू में ही करना?
1: बस मेरे को ना कुछ है कि मुझे कुछ ना कुछ करते रहना है
0: जी।
1: और इन सब चीजों से मैं बचपन से थोड़ी प्रेरित रही हूँ, क्रिएटिव मैं शुरू से ही थी
0: जी।
1: और ये जो पढ़ने का शौक मुझे लगा वो मेरी मदर से लगा।
0: अच्छा।
1: क्योंकि वो उस समय भी ना ये कौन कौन सी पुस्तिकाएं होती थी, धर्मयोग और ये कादम्बिनी, इस तरह की मतलब हाई लेवल की बुक्स पढ़ती थी। वो 12th पास थी उस समय की, लेकिन कोई जॉब नहीं किया था। तो बस मुझे वो उनको पढ़ते देखती थी और धीरे धीरे धीरे धीरे मेरे को रीडिंग करने की जो मिल जाता था, धर्मयोग कोई भी पत्रिका अखबार मतलब जो भी मिल गया वो मुझे उसको पढ़ना है।
0: वाह, वेरी नाइस। आपके साहित्य के बारे में हमें बहुत कुछ जानना है, लेकिन आप कविताएं जैसे हमारी पहली मुलाकात में आप मैं जान गई थी, आप बहुत कथा सुंदर से प्रस्तुत करते हैं, कविताएं भी लिखती हैं, तो जाहिर सी बात है अभी आपने माँ का जिक्र किया तो हमारी सबकी शुरुआत तो माँ से ही होती है, तो माँ के ऊपर आपने जो कविता लिखी है वो हमें सुनाइए प्लीज।
1: सबका धन्यवाद, नमस्ते। माँ केवल एक शब्द ही नहीं है, माँ बल्कि असीम शक्ति, ममता और आस्था का स्वरूप है। जब जीवन में अंधेरा छा जाता है तो माँ का नाम ही एक दीपक बनकर हमारे जीवन में उजाला करता है और रास्ता दिखाता है। आज उसी जगत जननी शक्ति स्वरूपा माँ के चरणों में, श्री चरणों में अपनी भावनाओं का ये छोटा सा भजन अर्पित करने जा रही हूँ, श्रद्धा भक्ति के साथ आप सब जुड़िए
0: जी।
1: पधारो माँ पूजा को, पधारो।

0: सजाया है।
1: क्या बात है, वेरी नाइस। जय माता दी। मेरा मन तो गंगा मैया के यहाँ पहुंच गया वाराणसी में, क्योंकि कितनी सुंदर, मतलब हम वो गंगा मैया को माँ कहते पुकार के बुलाते हैं।

0: और जो गंगा आरती का जो विलोभनीय दृश्य हमें अभी आपकी ये कविता में ये पद में साकार हुआ, वेरी नाइस, वेरी मतलब वेरी टचिंग. अभी शुरू करते हैं कि आपका जो साहित्य प्रवास है, आपने जैसे बोला कि माँ बहुत बुक्स घर में रहते थे तो आप पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए. मतलब जो शैक्षणिक जो भी हमारा स्कूल का पढ़ना रहता है वो अलग, और आपको हिंदी में ज़्यादा रुचि है तो आपने बीए इन हिंदी भी वैसे किया है. तो हिंदी के प्रति लगाव या फिर आस्था, आपको कौन से लेखक पसंद है हिंदी के, उसके बारे में और क्यों पसंद है?
1: मेरे को मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ बहुत पसंद हैं
0: जी,
1: और रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानियाँ बहुत, क्योंकि ये ना हमारे आसपास जो दिखता है उन सब से जुड़ी हुई है, सामाजिक समस्याएं, स्त्री की समस्याएं, और समाज में जितनी भी व्यभिचार या जितना उत्पीड़न होता है तो उन सब के ऊपर जो कहानियाँ लिखी है तो मुझे वो बहुत टचिंग
0: लगती है.
1: भावपूर्ण होती है, और मेरे को ना कहीं गहरे तक ऐसे ना क्या हुआ कभी मैंने कहीं किसी से कुछ सुना, मेरी बड़ी दीदी है तो वो भी साहित्यिक में बहुत
0: अच्छा रुचि
1: रखती हुई है बहुत ज्यादा. हाँ
0: अच्छा,
1: तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ मेरे को उसमें मैं लिखने लगी, लिखते लिखते क्या हुआ जुहू में रहते थे हम लोग तो वहाँ कृष्ण मंदिर था
0: जी
1: वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो मैं सडनली मैंने सोच लिया था कि मैं वहाँ जाके पहले दर्शन करके फिर ही नाश्ता किया करूंगी. वहाँ जाके जब मैं पिन ड्रॉप साइलेंस होकर शांति के साथ जब बैठती थी ना तो बस भगवान का चेहरा देखती थी, तो उस चेहरे को देखकर मेरे को अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो मैं जब उनको देखती थी ना तो मेरे को रोना आता था.
0: अच्छा,
1: और रोते रोते धीरे धीरे धीरे धीरे वो भाव उत्पन्न होने लगा. और पता लगा मैं तो वहाँ बैठे बैठे मोबाइल में ही उस समय जो आता था उस समय लिखती थी.
0: अच्छा,
1: फिर घर आकर जब उनको सुनाती थी तो सबको बहुत अच्छा लगता था, मुझे भी लगता था ये कैसे लिखा गया. मतलब मुझे ऐसा लगता था जैसे किसी और ने लिखा है.
0: जी,
1: फिर वो लिखने लगी, फिर धीरे धीरे मैं फिर उस स्पिरिचुअल ग्रुप से जुड़ी.
0: अच्छा,
1: फेसबुक पर अब उसमें जो था मैं अपनी ये रचनाएं डालने लगी. तो मोस्टली मैं तब कृष्णा के लिए ही लिखती थी.
0: अच्छा,
1: लिखते लिखते फिर धीरे धीरे कुछ और भी भाव होने लगा, जैसे मैं कभी गार्डन में गई तो दो तीन लेडीज जैसे बैठी हुई थी वहाँ, तो वो बहुत परेशान, उन्होंने अपनी कुछ स्टोरी बताई. तो मतलब मैं भी सेंट्री हो जाती थी कुछ, मैं भी ना ऐसी हूँ कि जल्दी मेरे भाव को छू जाती है किसी भी बात में. तो उन्होंने जब वो सुनाती थी तो मैं मुझे लगता था कि मुझे इनके लिए कुछ लिखना चाहिए, तो मैं उसी के ऊपर अपने शब्दों में स्टोरी लिखती थी. और वो जो स्टोरी सबको सुनाती थी ना तो सबको अच्छी लगती थी. बस मेरा इंटरेस्ट वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, फिर मैं साहित्यिक ग्रुप से जुड़ी, उसमें अपना आंगना करके मेरा साहित्यिक ग्रुप है.
0: अच्छा,
1: उसमें हम लोग सीखने सिखाने का रखते हैं, जैसे कि दोहा है, मैंने बहुत सारी चीजें सीखी उसमें. फिर जैसे दोहा है, छंद है, मुक्तक है, कविता तो मैं छंद मुक्ति लिखती हूँ.
0: अच्छा,
1: बस इस तरह से मेरा धीरे धीरे लिखने का शौक बढ़ता चला गया
0: जी. आपसे ऐसी बातचीत हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. आप सुनते रहिएगा आचार्य 90 FM, और आज हमारे सेलिब्रिटी शो में हमारे साथ जुड़ी है नीलम गोयल जी, जो हिंदी की साहित्यिक है, हिंदी की स्नातक है, और आप सुनते रहिएगा आचार्य 90 FM ओनली.

0: ब्रेक के बाद आप सभी से जुड़ रहे हैं सेलिब्रिटी शो में। हमारे साथ आज की सेलिब्रिटी है नीलम गोयल मैडम, और जो हमें बहुत कुछ आज कथाएं सुनवाने वाली है, कविताएं सुनवाने वाली है। मैडम आप मतलब हम सब लेडीज हैं, तो हमारी हमें डेली परेशानियां होती है, घर का भी देखना पड़ता है, और जो नौकरी व्यवसाय कर रहे हैं वो भी वहाँ पे मतलब बच्चों का देखना, घर का देखना और ऑफिस का भी काम देखना, दोनों स्तर पर हम लोग काम करते हैं, लेकिन बेटियों को वो स्थान नहीं मिलता जो आज के समाज में मिलना चाहिए, उसकी ज़रूरत है। और उसके ऊपर जो आप मैंने आपकी सुनी है वो कविता मुझे बहुत पसंद है, तो मैं चाहती हूँ हमारे आचार्य 90 FM के दर्शकों को भी वो सुनवाएं। तो ज़रूर आपने वो आप बेटी के दर्द दुख को समझती है और उसके बारे में आपने लिखा है, तो वो ज़रूर हमें सुनवाइए।
1: जी बिल्कुल, ये सच बात है कि हमारे समाज में आज भी बेटियां बहुत कुछ आगे कर रही हैं, लेकिन ना फिर भी कहीं ना कहीं उनको उनका दमन होता है, कहीं ना कहीं उनको रोका जाता है और वो अपनी इच्छाओं से हर कुछ नहीं कर पाती हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि बेटी केवल एक शब्द नहीं है, ये एक एहसास है और एक ऐसा प्यारा रिश्ता है जो जन्म से पहले ही दिलों से जुड़ जाता है। आज मैं उसी अनमोल रिश्ते बेटी पर अपनी भावनाएं प्रस्तुत करती हूँ। बेटी ईश्वर की सबसे सुंदर रचना, जिसका जिसकी हंसी से घर आंगन में बसंत उतर आता है,
0: क्या बात,
1: उसकी हंसी में ही संसार की रौनक बसती है और जिसकी आंखों में भविष्य के अनगिनत सपनों की किरणें झिलमिलाती हैं, वो केवल किसी घर की लाड़ली ही नहीं है केवल, बल्कि हर समाज की वो आत्मा है, हर संस्कृति की पहचान है। बेटी के रूप में ही संवेदना जन्म लेती है और ममता अपना अर्थ पाती है और भविष्य अपनी दिशा।
0: वाह क्या बात,
1: आज बेटी दिवस पर हमें ये स्मरण करना है कि बेटी का सम्मान केवल एक दिन का उत्सव नहीं है, बल्कि जीवन भर निभाया जाने वाला वो संस्कार है। हर बेटी को पढ़ने का, लिखने का, अपनी इच्छा से उड़ने का, स्वयं को पहचानने का अधिकार है
0: जी।
1: क्योंकि जब एक बेटी आगे बढ़ती है तो एक पूरा युग प्रकाशमान होता है
0: जी। बिल्कुल,
1: आज की बेटी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, विज्ञान में, साहित्य में, खेल में, राजनीति में, पाक कला में, मतलब कोई ऐसा स्थान नहीं है कि जहाँ वो पहुंची नहीं है
0: जी।
1: हर जगह उसने अपनी पहचान बनाई है, की उड़ान आसमानों को छू रही है, परंतु विडम्बना ये है कि कुछ स्थानों पर आज भी बेटी के साथ भेदभाव, अत्याचार और शोषण का सामना उसको करना ही पड़ता है
0: जी।
1: ये सब हमें झकझोरता है, मन को परेशान कर देता है और सोचने के लिए विवश करता है और हमें सजग भी करता है
0: जी।
1: कि कोई भी बेटी अब भय और अन्याय की छाया में ना रहे, बेटी का सम्मान, सुरक्षा, उसकी देखभाल, स्वावलंबन और हमारा नैतिक, सामाजिक, मानवीय दायित्व तो है कि बेटी आस्था भी है, प्रेरणा भी है, उससे ही धरती की मुस्कान जीवित है। इसलिए बेटी केवल उत्सव नहीं, एक चेतना है, एक संकल्प है। बेटी पर कुछ पंक्तियां लिखने का प्रयास किया है जो आपसे साझा करती हूँ। नन्ही सी हंसी में उजियारा बसे
0: जी।
1: हर सपने में उसका तारा बसे, न रोको उड़ाने, न रोको उड़ाने ये फलक छूले, न रोको उड़ाने ये फलक छूले, हर बेटी में ही तो सारा जहां बसे। बेटी मुस्कान है, बेटी अरमान है, जीवन की हर राह में वरदान है। आओ प्रण करें आज हम सभी, हर बालिका का सम्मान हमारा मान।
0: वाह यस वेरी नाइस। अभी ये कविता तो हम सुन रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आप कथाएं भी लिखती हैं, तो आपकी कथा कहाँ और कथा और कविता कहाँ कहाँ प्रस्तुत करती हैं?
1: कथाएं और कविता ये हमारा एक साहित्यिक ग्रुप है, उसमें भेजती हूँ, कुछ किताबों में भी छपती हैं। और मैं बहुत पहले जब मैं शादी होकर ही आई थी तो वहाँ हम लोग होली का
0: त्योहार मनाते थे जी।
1: होली के बाद हमारे यहाँ 8 दिन तक ये लेडीज को बुलाना और अच्छा। खिलाना पिलाना उस सब मनाते थे, जिसको जो रुचि होती थी वो आपस में शेयर करता था। तो इसी तरह से एक बार हमने बुलाया हुआ था सबको और मैंने उन्हीं लेडीज के ऊपर एक कुछ छोटी सी कहानी
0: अच्छा
1: सुनाई और वो मेरी फिर अमर उजाला अखबार में
0: क्या बात
1: निकली।
0: है हाँ।
1: निकली तो फिर लोगों को पता लगा कि आप लिखती भी हो। क्या होता है ना, हम लिखते तो हैं
0: हाँ।
1: लेकिन हमारी जो हमें उत्साह जो मिलता है वो औरों से मिलता है
0: जी,
1: जो पढ़ते हैं
0: हाँ।
1: जब हमारा उत्साह वर्धन होता है ना तो हमारा और इच्छा करती है हाँ शायद हमने कुछ अच्छा लिखा
0: अच्छा लिखा है
1: कुछ और इससे भी अच्छा करके दे। तो बस इसी तरह से धीरे धीरे धीरे धीरे मेरा लिखने का शौक बना। फिर और मैं जिस परिवार में से दूसरे परिवार में गई थी तो वहाँ का माहौल बिल्कुल अपोजिट था। तो वहाँ क्या होता था मतलब बहुत सिंपल बहुत अच्छे लोग हैं हमारे
0: हाँ।
1: वो भी लेकिन जो रहन सहन और जो ख्याल थे वो थोड़े अलग थे
0: जी।
1: मतलब इतना डिफरेंस था कि मेरे को वो लोग बिलायती बहू कहने लगे थे।
0: अच्छा।
1: पर एक समय ऐसा आया कि जब उन्होंने मेरे विचारों को सुनते थे
0: हाँ।
1: मेरी सेवा को देखते थे तो धीरे धीरे मेरी ये उन्होंने लिखी हुई चीजें भी पढ़ते थे तो उनको उन्होंने फिर मतलब इतना मान सम्मान दिया कि जो मेरे बड़े लोग थे ना
0: हाँ।
1: वो भी मेरे को ऐसे इनवाइट करते थे मैं आपको वो किस्से में बता नहीं सकती कि वो सबके बीच में मेरे को किस तरह से खड़ा करके फिर मेरा बताते थे लोगों को।
0: अच्छा अच्छा।
1: तो इस तरह से मेरा उत्साह वर्धन बहुत हुआ
0: हाँ।
1: फिर मैंने साहित्यिक ग्रुप से जुड़ी तो उसमें लिखना शुरू किया
0: जी।
1: तो एक बार मैंने अपनी फ्रेंड के ऊपर संस्मरण लिखा। जब संस्मरण लिखा तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगा और बोले ये तो मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है मैं पढ़ रही हूँ तो जैसे मैं सामने रेखा चित्र कर दिया हो ऐसा लग रहा है। तो उससे मैं बहुत प्रेरित हुई उत्साह वर्धन हुआ। फिर उन्होंने एक बोले कि आपको कहानियां लिखनी है
0: जी।
1: मैंने कहा मैंने ऐसी कहानियां नहीं लिखी है
0: हाँ।
1: तो बोलते हैं कि नहीं नहीं आप कोशिश कीजिए आप लिखोगी आप लिख सकते हो
0: जी।
1: फिर मैंने दो कहानियां लिखी जिसमें से एक मेरी पास हुई और उन्होंने इस कहे अनकहे
0: हाँ।
1: शब्दों के कैनवास में
0: अच्छा,
1: छपी
0: छपी हाँ।
1: इससे पहले क्या था ना छोटी छोटी बुक्स में छोटी छोटी उसमें निकल रही
0: हाँ,
1: थी
0: हाँ।
1: एक जैसे ये है आखर
0: लुकता हाँ।
1: इसमें ये वर्ष में तीन निकलती थी
0: अच्छा।
1: तो उसमें एक बार एक कविता निकली एक बार वो मेरी कहानी निकली
0: अच्छा।
1: बस उससे मैं प्रेरित हुई और फिर मैंने लिखना शुरू किया
0: जी। अभी आप सामाजिक कार्य से भी जुड़े हैं उसके बारे में भी जानना चाहेंगे कि आप कैंसर पेशेंट से ज्यादा मतलब उनसे ज्यादा मिलते हैं तो वो सामाजिक कार्य की रुचि आपने कैसे।
1: वो क्या था ना मेरे अंदर ना ये शुरू से सेवा का भाव था।
0: अच्छा।
1: जब मैंने ग्रेजुएशन करके चुकी तो एक महीने की छुट्टी थी
0: जी
1: और शायद मेरी को देखने वाले भी कुछ लोग आने वाले थे घर पर। तो उस बीच मैंने घर में कहा कि अभी तो मुझे शादी नहीं करनी है मेरे को जो है
0: पढ़ना
1: लॉ करना है
0: अच्छा।
1: मुझे आगे लॉ करना है
0: हाँ।
1: तो सब लोग बोले कि हाँ हाँ हो गया लॉ सब हो गया
0: अच्छा।
1: बस अब क्या और क्या करना है। मैंने कहा मेरे को अच्छा स्कूल में टीचिंग करनी है
0: अच्छा।
1: तो मैंने कहा ठीक है अब मैंने कहा विदाउट पे करनी है
0: हाँ।
1: पास में एक स्कूल था छोटा सा
0: हाँ।
1: और उसमें मैं जाने लगी वन
0: अच्छा।
1: मंथ मैंने पढ़ाया
0: हाँ।
1: अब उसमें जो था एक बच्चा भी था वो धीरे धीरे मुझसे बहुत अटैच हो गया और बोला दीदी मैं आपसे और भी पढ़ना चाहूँ। मैंने कहा ठीक है तुम घर आ जाओ
0: अच्छा। हाँ।
1: वो घर आने लगा मैंने उसको पढ़ाया
0: हाँ।
1: उसका नंबर्स बहुत अच्छे आए
0: हाँ।
1: कुछ नहीं वो हो गया मेरी शादी भी हो गई 25 साल बाद मेरे पास कॉल आती है उसकी
0: अच्छा
1: कि हेलो दीदी बोल रही है। मैंने कहा आप कौन बोल रहे हैं। मैं राजू बोल रहा हूँ। मैंने कौन राजू
0: हाँ।
1: अरे दीदी आप भूल गई मैं वही राजू हूँ जिसको आपने घर पे बैठ के पढ़ाती थी यार
0: अच्छा।
1: आज मैं इस पोस्ट पर हूँ आया है
0: नौकरी
1: कर रहा हूँ बेंगलोर में मैं।
0: क्या बात है
1: मतलब मैं वो पढ़ी थी उस समय खुशी की वजह से
0: हाँ।
1: तो ये मेरे को ना शुरू से था
0: हाँ।
1: और इसके बाद फिर मेरी जब शादी हो गई तो एक पास में एक दूध जिनके यहाँ से आता था
0: हाँ।
1: जैन मंदिर के बराबर में उनकी दूध
0: हाँ।
1: का गाय वगैरह रखते थे
0: हाँ।
1: तो वो जब लेते थे उनसे
0: हाँ।
1: तो उसके एक भाई की ना डेथ हो गई थी उसके बच्चे थे तो वो परेशान थे और मुझे लगता था शायद अभी इनके घर वाले इन बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे
0: हाँ।
1: तो मैंने उनको बोला मेरे बच्चे स्कूल चले जाते हैं मेरे दो बच्चे हो चुके थे तब तक कि वो चले जाते हैं तुम इस बीच आ जाए करो मैं काम निपटा के 11 बजे करी तुमको टाइम दूंगी
0: अच्छा।
1: उसको इतना अच्छा पढ़ना आ गया
0: हाँ।
1: कि उसने 12th पास किया
0: क्या बात है।
1: और मतलब वो अपनी लाइफ में शादीवादी हो गई
0: हाँ।
1: सेट हो गई। तो मुझे ये शुरू से कुछ आदत थी। अब यहाँ जब इन्होंने VRS लिया बैंक से स्टेट बैंक में मेरे हस्बैंड
0: हाँ, काम करते थे
1: हाँ, तो जब उन्होंने VRS लिया तो सब लोग बोले कि अरे इतने वो ले रहे हैं और आप परेशान हो जाओगी घर
0: हाँ।
1: में रह के क्या करोगी ये सारे दिन चाय बनवाएंगे और कॉफी बनवाएंगे सारे दिन तुम बिजी रहोगी परेशान हो जाओ। मैंने कहा जो होगा मैंने उनको समझा लिया, अगर हाँ, वो इसमें खुश है वीआरएस लेने में तो मुझे कोई हर्ज नहीं है। तो उन्होंने जब लिया तो यही लगा कि अब हम क्या करें, क्योंकि टाइम एक्सेस में रहता था, सुबह सुबह टिफिन बना के नहीं देना, और बच्चे भी बड़े हो गए, अपनी नौकरी में चले गए थे बच्चे। तो ये जो राम मंदिर का ये जब हुआ तो प्रसाद देने कुछ लोग घर पर आए, जब घर पर आए तो मैं हमने उनकी आरती उतारी।
0: अच्छा,
1: आरती उतारी और घर पे बिठा के उनको पानी वानी देने के लिए कहा, तो वो बहुत खुश हुए, आरएसएस के लोग थे
0: जी।
1: जब वो उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि कुछ दिन बाद उनका कॉल आया कि ऐसे ऐसे आप लोग उससे जुड़िए। मैंने कहा ठीक है जुड़ेंगे, आप लोग पहले घर पर आओ। ये हमको पता था कि आरएसएस के लोगों को घर पे बुलाना चाहिए
0: जी।
1: तो वो लोग धीरे धीरे हमारे यहाँ आने लगे, कभी लंच पर कभी ब्रेकफास्ट पर
0: जी।
1: उन्होंने कहा, मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा मेरे को ना कुछ करने का मन करता है अभी, हाँ, ऐसा लगता है मैं अभी कुछ कर नहीं रही, बेकार हूँ। तो वो बोले ठीक है आप ऐसे ऐसे करके आइए, हनुमान टेकड़ी पर साइन कोलीबारा में वहाँ कैंसर पेशेंट्स का है, और आप आइए वहाँ आइए, आपको अच्छा लगेगा, फिर आपको जिम्मेदारी देंगे।
0: ठीक है,
1: वहाँ गए, वहाँ गए तो क्या हुआ, वहाँ पेशेंट्स थे, मैं सबसे मिलने जाती थी।

0: फिर उन्होंने एक रूम का मेरे को चार्ज दे दिया
1: अच्छा
0: कि आप इन लोगों से कांटेक्ट में रहिए, देखिए इन पे क्या चीज़ है, इनको मेंटली सपोर्ट कीजिए। तो हम उनसे जाके कभी कभी उनको भजन सुनाती थी, कभी उनसे बात करती थी, क्योंकि क्या
1: बात करने से भी वो खुल जाते हैं और
0: क्या है
1: थोड़ा इमोशनली अच्छे रहते हैं।
0: क्या है ना, पेशेंट्स जो है मुझे लगता है कि वो
1: डिप्रेशन
0: से नहीं जाता, वो सोच कर चला जाता है
1: जी।
0: फिर हम लोग की एनकोलॉजी को लेकर क्लासेस हुई, ट्रेनिंग हुई हमारी, तीन तीन दिन की क्लास चलती थी कि उनको साथ हम लोग को कैसे बिहेव करना है, कैसे नहीं करना है, क्या उनके सामने नहीं कहना है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ दिन तो क्या हुआ, जब हम घर आते थे ना तो मैं सो नहीं पाती थी,
1: उनका दुख दर्द देख के
0: सो नहीं पाती थी। तो ये भी समझाते थे, उन लोगों ने समझाया देखो ऐसे सेवा नहीं हो सकती, आपको यही छोड़ कर जाना होगा, यही छोड़ कर जाना होगा, जो भी देखा है उनके साथ आप अच्छा एटीट्यूड कीजिए, अच्छा व्यवहार कीजिए, लेकिन घर जाकर नहीं लेना है, पर आप पढ़ जाओगे क्या फायदा है।
1: बराबर।
0: फिर बस वो धीरे धीरे वहाँ पता लगा हमको, स्लम एरिया में स्कूल्स खोल रखे थे उन लोगों ने, फ्री ये शाला फ्री चला रखी थी स्लम एरिया के बच्चों के लिए। तो वहाँ उन लोगों ने, मैं गई देखने, अभी मैं स्लम एरिया में नहीं गई थी
1: राइट,
0: लेकिन मतलब मेरे को दिक्कत भी लगती थी, मुंह बंद करके जाती थी कई बार, और कई बार बहुत कीचड़ नीचे भी होती थी, तो शूज पहन के साड़ी पहनना बंद कर दिया था, टाइट कपड़े पहनना शुरू कर दिया था कि गिरे ना कहीं
1: जी।
0: और वो बिल्कुल ऐसी रेलिंग होती थी कि देखकर लगता था
1: कैसे रहते हैं
0: हम, इतने बड़ों बड़ों में रह के लगते हैं हमको ये परेशानी
1: जी,
0: वो लोग कैसे रह रहे हैं। तो धीरे धीरे करके मतलब मैं पर्सनली उन लोगों से इतनी अटैच हो गई, उन लोगों ने फिर मेरे को निरीक्षण बना दिया।
1: अच्छा।
0: 35 शालाओं का निरीक्षण था, तो जो हम लोगों को, हम मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जाते थे। बस इसी तरह से धीरे धीरे करके
1: वो समाज कार्य बढ़ता गया आपका।
0: किशोरी वर्ग शुरू किया फिर हम लोगों ने, जैसे किशोरी बच्चों के लिए 8 वर्ष से और 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए, जैसा कि आजकल माहौल चल रहा है तो उनको सेव करना, उनको गाइड करना है
1: राइट,
0: तो वो भी
1: करते हैं।
0: तो बस सब काम होते थे घर के भी, और बहुत एक्टिव रहती थी, ऐसा नहीं था कि कोई काम छोड़ के जा रही हूँ, काफी सारा काम होता था
1: बराबर,
0: और आके बस
1: और आप ज्यादा
0: सोते थे
1: हाँ,
0: मतलब बहुत रिलैक्स होता था कि हमने हमारे
1: कुछ
0: हाथ से
1: तो
0: कुछ
1: किया।
0: तो हुआ
1: जी। तो अभी अंत में आपकी एक सुंदर सी कविता वापस सुनते हैं और ये जो शो का अंत करते हैं, ठीक है?
0: ठीक जी।
1: आप कौन सी कविता पढ़ना चाहोगे
0: बताऊँ?
1: जिंदगी के बारे में, अभी हम जिंदगी के बारे में इतने
0: जिंदगी
1: के बारे में सुनते हैं,
0: कर लेगी छोटा सा है
1: जी,
0: चलेगा
1: या
0: जिंदगी है तो सब कुछ है कहते हैं ना
1: जी,
0: जिंदगी इसकी ये मैंने कुछ लाइंस लिखी हैं, बहुत छोटी सी, शायद आपको पसंद आए
1: जी। बिल्कुल।
0: जिंदगी तेरे लिए मैं प्यार लाई हूँ, जिंदगी तेरे लिए मैं प्यार लाई हूँ, ये घड़ी ये धूप ये दिन ये रात कल भी आई थी
1: आज भी आई है
0: कल भी आई थी और आज भी आई है, किसी को ये सिंहासन देगी और किसी के लिए बेबसी देगी, ये सूरज जो सिर पे चढ़ा है शाम को पाँव में उतर जाएगा, इसी तरह ये सांस का राही क्या पता किस पाँव पर रुक जाएगा।
1: क्या बात।
0: इसी तरह ये सांस का राही क्या पता किस तरह किस पांव पर रुक जाएगा, गीत गाओ स्नेह का संसार लाई, जिंदगी मैं तेरे लिए
1: प्यार लाई हूँ। क्या बात।
0: नई आशा नए सपने नए संकल्प मैं बुलंदी का सघन विस्तार लाई हूँ, मैं बुलंदी का सघन विस्तार लाई हूँ, मुस्कराओ आज मैं उपहार लाई हूँ, जिंदगी तेरे लिए
1: मैं प्यार लाई हूँ। क्या बात है। कितना पॉजिटिव अप्रोच है टुवर्ड्स लाइफ, मतलब जिंदगी के ऊपर अपने बहुत अच्छा अच्छे से लिखा है, और आज हमारे आचार्य 90FM से आप जुड़े हैं इसके बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप ऐसे ही लिखते रहिए, मिलते रहिए और हमें हमेशा कुछ ना कुछ देते रहिए। थैंक यू सो मच जी।